0: वेखो किन्ने प्यारे चक्कर खंड निवात गोड़ अगे माखियो माझा दुध ए सारिया चीजा आपां किसे ना किसे समय चक के वेखिया। शक्कर खा के वेखी, खंड खा के वेखी, निवात दा मतलब मिश्री खा के वेखी, माखियो दा शहद खा के वेखिया, माझा दुध पी के वेखिया। मेरे सतगुरु ने सारिया चीजा का ना लैके जिन्हां ने चखिया उन्हां नूं इस गल का पता लगा। आखो सतनाम श्री। ए गल उन्हां ने आखे अलौती का जैसे पया बरेडा, बोलो अलौती का जैसे पया बरेडा, जिन पिया तिन जानिया, जिन पिया तिन जानिया। बाबा कबीर कहिंदा है गर्मी होवे ठंडा पानी होवे ते मिश्री दा बनिया होवे शरबत मिश्री दा, अलौती का जैसे भया बरेडा, मिश्री दा शरबत होवे एडा सरबलो दा कौला भरिया, ते फिर जिन पिया तिन जानिया। ये ते जिन्ने पीता है ओनू पता ना फिर मिश्री दा शरबत किन्ना आनंद देई है। इथे भी बाबे फरीद ने जदों उस परम पिता परमेश्वर दी बंदगी दा रस चख लिया ओदी मिठास वेख ली, ते हुण कहिंदा नहीं शक्कर खंड निवात गुड़ माखियो माझा दुध ए सारियां चीजां हे वाहिगुरु बड़ियां मिठियां ने खा के वेखियां ने। हांजी अगे जी
1: सबे वस्तु मिठियां रब ना पुजन तुद।
0: बड़ा प्यारा बचनिया साहब जी कहिंदे ने सबे वस्तु मिठियां। इथे खिलारो एक बार सारे आखो सबे वस्तु जिको आपा कहने ए ते गल ठीक है, ए ते गल पर अगे ना पर आवी ते गल है आ गल जेड़ी ए होर आनंद दी आ। इथे भी मेरे सतगुरु कहिंदे ने एदे विच कोई शक नहीं कि शक्कर मिठी नहीं, एदे विच कोई शक नहीं कि खंड मिठी नहीं, एदे च कोई शक नहीं कि किते शहद जेड़ा वा माखियो दा ओ किन्ना मिठा है, एदे विच कोई शक नहीं कि माझा दुध किड्डा प्यारा है। एक बार भाई नंद लाल साहब नूं किसे गुरसिख प्यारे ने पुछ लिया कि तेरे सतगुरु गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह ने जदों मुंह दे विचों बोलदे ने उन्हां दा एक एक बचन किन्ना क मिठा है। आखो सतनाम श्री। जरा गज के आखो समा हो चलिया है मेरा गुरु नानक तुहाडियां झोलियां भर के घरां नूं भेजे। आखो सतनाम श्री। जन्मां दे भुखे आयो गुरु नवाज दवे। आखो सतनाम श्री। तेरा सतगुरु जदों गुरु गोबिंद सिंह साहब बोलदा वा किन्नी क मिठास आ। ते भाई नंद लाल साहब ने छेती नाल आखिया जिन्नी एक खंड दी बोरी मिठी, शक्कर दी बोरी मिठी। ते फिर छेती नाल कहिंदा नहीं नहीं मैं गलत कह बैठा, मैनू माफ करियो मैं गलत कह बैठा। उन्हें कहा दस फिर किन्ना क मिठी है। उन्हें फिर एक बोरी दो बोरियां करदे करदे कहिंदे ने आ दो जहान लोक ते परलोक शक्कर दे बन जाण, लोक ते परलोक शक्कर ही हो जाए। ते जिन्नी ओदी मिठास आ ਉਹ ਮਿਠਾਸ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਏ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸਵਾਮੀ ਮੋਰਾ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਉਹ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਮਗਰ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਮੈਂ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਵਾਤ ਗੁੜ ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਿਠਾਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਆ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇਰੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਮਿੱਠਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਮਗਰ ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੀ। ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਹਾਂਜੀ।

0: नानक बोले बलाया तेरा, नानक बोले बलाया तेरा, ज्यों बलावें त्यों बोला स्वामी, कुदरत कवन हमारी, ज्यों बलावें त्यों बोला स्वामी, कुदरत कवन हमारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की आत प्यारी, साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनता दे योग जे जो धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह दे दर्शन दरबार करके तन हो रहे हो, भाई गुरुदास जी का एक पावन बचन सारे पढ़िए। सतगुर दर्शन धन है, सतगुर दर्शन धन है,
1: सतगुर दर्शन धन है, सतगुर दर्शन धन है,
0: सतगुर दर्शन धन है, सतगुर दर्शन धन है,
1: सतगुर दर्शन धन है, सतगुर दर्शन धन है।
0: धन धन गुरसिख परसन आया, धन धन गुरसिख परसन आया,
1: धन धन गुरसिख परसन आया, धन गुरसिख परसन आया,
0: धन धन गुरसिख परसन आया, धन धन गुरसिख परसन आया,
1: धन धन गुरसिख परसन आया, धन धन गुरसिख।

0: तू साहेब सच्चे वेख तू साहेब
1: सच्चे वेख तू साहेब सच्चे वेख
0: साहबा वेख साडे वल झाती मार एक चिट्ठियां लिखियां ने मिशनरी कॉलेज वालियां चिट्ठियां लिख सतगुरु वल पाईयां चिट्ठियां लिख ते उना दे विच दोखी ते लिखे ने उना दे विच एही ते लिखिया धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह दीन दुनिया दे मालक जी मैं तुहानू आ बेनती करदी हां मैं तुहानू आ बेनती करदी हां जीव आत्मा वालों चिट्ठियां लिखियां कदी पढ़ियो कदी चिट्ठियां लिख सतगुरु वल पाईयां फिर बोलो चिट्ठियां लिख आपां भी एक बेनती करिए धन गुरु गोबिंद सिंह साहब पातशाह दीन दुनिया दे मालक एक छोटी जी बच्ची आसनसोल पांच क साल दी बच्ची सवा क लख दा इकट्ठ संगत गुरु नानक दे पुरब ते जुड़ी जो बिहारी जो बंगाली जो सिख उस इलाके का ट्रकां वाला बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर उधर रहिंदे ने टाटा नगर आसनसोल हजारी बाग ए शहर बड़े सारी संगत वाल हाथ जोड़ के कहिंदी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सारी संगत वाल उंगला मार मार के कहिंदी ध्यान दियो मेरी कविता का शीर्षक है नीला घोड़ा ध्यान दियो मेरी कविता का शीर्षक की है बोलो नीला घोड़ा ते ओ बची सारी संगत वाल हाथ करके कहिंदी नीलिया मैं तेरे चरणा च हाथ जोड़ दी नीले नू कहिंदी नीलिया मैं तेरे चरणा विच हाथ जोड़ दी एक बार मुड़ के आ एक बार मुड़ के आ ते अपने सवार नू उत्ते भाल के लिया ते मैं तेरी लगाम फड़ पांच साल दी बची कह रही मैं तेरी लगाम फड़ लूंगी ते मैं एक एक सिख दे घर विच तेरे सवार नू लैके जाऊंगी ते जदो घर दे विच बच्चियां दे कट्टे केस दाड़ियां कट्टियां शराबां दियां बोतलां मांस पिया विखाऊंगी ते मैं आखूंगी नीले दे शाह सवारा इन्हां लई पुत वार के गया है इन्हां लई मां वारी सी इन्हां लई प्यो वारिया सी आ वेख तेरा सारा पंथ अज तेरे तो बेबुक हुंदा जांदा ही मेरा कहने का मतलब है तुसी भी एक बार बापू नू कहो तू साहेब सच्चे वेख तू साहेब सच्चे वेख तू साहेब
1: सच्चे वेख तू साहेब सच्चे वेख
0: साहबा वेख साडा जीवन हो गया चिंता दी मंजे ते सुते ही दुखां दा वाण ही चिंत खटोला वाण दुख बिरहे विछावण लेव तलाई विछोड़े दी विछियू इस तरह के मंजे ते असी जीवन बतीत कर रहे विछोड़े दे विच सड़ रही तेरे दे विच अगला वचन सरवण करो जी
1: बिरहा बिरहा आखिया बिरहा तू सुल्तान
0: बड़े सुंदर वचन किते ने बाबे ने हुण समाप्ति करांगे एक बार प्यार नाल आखो सतनाम श्री बाबा कहिंदा दुनिया कहिंदी विछोड़ा विछोड़ा विछोड़ा विछोड़ा विछोड़ा बड़ा माड़ा आपां कहिंदे ना विछोड़ा बड़ा माड़ा है एक थां ते लिखिया गुरबाणी दे विछोड़ा सुने दुख विछोड़ा विछोड़ा एक एहो जिहा शब्द है जिहदा नां लिया ही दुख हुंदा है मगर इत्थे बाबा फरीद जी बड़े प्यार दे वचन विच कहिंदे बिरहा बिरहा आखिए लोकी कहिंदे विछोड़ा विछोड़ा मगर बिरहा तू सुल्तान तू ते बादशाह बिरहा तू ते पातशाह केड़ी गलो जी हां जी
1: फरीदा जित तन बिरहो ना उपजे सो तन जान मसान
0: कहिंदे जेदे विच हिरदे विच ए विछोड़ा ही नहीं जेदे अंदर विछोड़ा पैदा ही नहीं होया कि बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ए जन्म तुम्हारे लेखे जिन्हें कदी ये क्या ही नहीं जन्म जन्म

इन्हें जोतड़ी की मेरे मन विच भी चाह पैदा होया है। छेवें पातशाह सतगुरु गुरु नानक पातशाह दे छेवें स्वरूप जी मेरे मन विच भी यह चाह मेरे मन विच भी यह भुख लगी आ कि किते मैनू भी तेरे दीदार होण। फिर मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह सिखां दे नाल जदों पिंड विच गए ने ते मेरे साहिब ने सारे सिखां नूं आख्या तुसी पिंड विच जाके सत संगत करो नाम जपो असीं आ रहे हां। तुर पिया अंदर दियां जानण वाला मेरा मालक जिस पापी को मिले ना ढोई शरण आवे ता जिस नीच को कोई ना जाने नाम जप तो चौं कुंट माने ओ नमाणियां दा माण नताणियां दा ताण न्योटियां दी ओट। सतगुरु गरीब नवाज पातशाह घोड़े दियां वागां मोड़ियां ते मेरे गरीब नवाज उथे आ गए जिथे कुटिया विच कोड़ा पिया। मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह दीन दुनिया दे मालक दे घोड़े दे सुम्मां दी सोच सुनी ते कोड़े ने नेत्र खोले। मेरे सतगुरु ने आख्या प्यारिया बाहर आ जिन्हू याद करदा सी असीं आ गए हां। मेरे गरीब नवाज पातशाह मैं कितना तुरां कोड़ नाल मरिया है। मेरे मालक कहिंदे रिड़के आ जा बाहर। घोड़े की लगाम हथ विच फड़ी आ साढ़े सत फुट उच्चा कद आ अखां खीवियां ने अमृत नाल भरिया रसना दे उत्ते मिठे बोल ने प्यारिया बाहर आ कुछ नहीं हुंदा तू कोशिश कर। बाहर आया

वाह वाह वाह वाह वाह वाह। अच्छा ऐनी प्यास लागी हो, ऐनी अंदर तड़प पैदा हुई हो, ऐनी वे तो बिना उदास हो गई है, सिर देन नु तैयार है। आंधी हां सजना नैन हमारे तेरे आ रंग रंगारे, मेरिया अखां उहदे रंग विच रतियां गई ने, 24 घंटे होर किसे नु नहीं देख दिया, ये 24 घंटे गाउंदियां ने, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी पावां तरला तुसी भी, एक भोरी दर्शन दी जय, एक

करो कृपा। विण सेर सेव करी जय, विण सेर सेव करी जय, विण सेर ये पक्के गुरु दिया प्रेमणा ने, जिन्हां नूं पूरे गुरु की चेता लगी आ, जिन्हां नूं पूरा गुरु मिलन दा चा मन विच पैदा होया, वह सौदा कर दिया ने, कहिंदियां सिर दवांगियां, सिर सिर दा मूड़ा बना के तेनू उत्ते पावांगियां, एक बार मैनू प्यारे दा राह दस। अज कच्चे गुरु कच्चे कहण वाले, मैं अजूटा सैटी जिथे गया सां, गुरमुख प्यारे भी गए सी, भाई तारा सिंह हुणी उथे प्यारे, एक सज्जन मिलिया मैनू, एक बार आखो सतनाम श्री वाहिगुरु, प्यास की गल आ के प्यास भी लगे ते पूरे गुरु दे दर्शना दी लगे, पूरे गुरु दे दी किना दी, हां फिर एक बार आखो का दी जी, अधूरे बड़े ने 99, अज अधूरे ने इस दुनिया ते, इस वेले 99 गुरु अधूरे ने, 99 इको ही पूरा है, बाणी गुरु, एदे तो बिना कोई धरती ते गुरु नहीं। उथे कमाल दी गल सुनाई, सहते मोना सी, वह कहिंदा जी कथा सुनदा वा, आनंद आया जीवन विच, मैं तुहानू घुम्मण खाणना किसे दिन, यूटा साल्ट लेक दे लागे लागे बड़े सुंदर पहाड़ ने, बर्फ पैंदी, मैनू कहिंदा मैं तुहानू घुमा के लिया, घुमाण लै गया, ध्यान दिओ एकाग्रता बख्शो, मैं कोई रोचक गल बना के आप जी का ध्यान नहीं उहदे विचों कुछ लैणा चाहुंना, पहाड़ी दे उत्ते लै गया जाके, कहण लगा कि कुछ दिनों तो जदों दा कथा सुन लिया, मेरा मन करदा है कि मैं अमृत छक लां। आप जी नूं खुशी दी गल दसां, 27 तरीक नूं उत्थे अमृत दा बाटा तैयार करना है, सारा शहर ही अमृत छकण लई तैयार हो गया, जिन्नियां 60 फैमिलियां रहिंदियां ने जूटा सिटी दे विच, 60 दियां 60 फैमिलियां ही अमृत छकण लई तैयार, सारियां ने नाल खाता, ऐसी गुरु की कृपा हुई। इनू जो दास ने बेनती की कि छसरना जे तेन गुरु के बचन प्यारे लगे ने ते फिर तू अमृत छकण लई तैयार हो जा, कहिंदा मैं नाम लिया है, ध्यान दियो मैं नाम लिया है, मैं नाम कित्थों लै लिया, पंजां तो बिना ते नाम कोई दे नहीं सकदा, बोलो आखो सतनाम श्री, क्योंकि एक बाणी दे विच बचन लिखा सतगुर दाता हर नाम का, सतगुर दाता, फिर बोलो सतगुर दाता, गज के एक बार आखो नाम कौन दे सकदा, सतगुर दाता अमृत दा बाटा भी जे कोई कल्ला बंदा बना के दे दे ते लै लोगे, पांच सिंह अमृत जो देवे ताको सिर धर शक पुन लेवे, कल्ला बंदा ते रहत भी दृढ़ करावे ते नहीं लैनी, पुन मिल पंचों रहत जो भाखे ताको दृढ़ कर मन में रखे, जेड़े पंजां दा फैसला है। ते कहन लगा जी मैं नाम लिया है, मैं कित्थों लै लिया नाम, राधा स्वामियां तो, कहिंदा नहीं, मैं निरंकारियां कोलों, कहिंदा नहीं साडे दुश्मन थोड़े नहीं होण, आप जी नूं तां बेनतियां करदा सचेत होण दी जरूरत, दुश्मन थोड़े नहीं, आख्या फिर कित्थों लिया, सच्चे सौदे वालियां दा लै लिया ई, नूर महल वालियां दा कोई शब्द शूद चानना वेख लिया, कहिंदा ना इन्हां दा नहीं लिया, मैं क्या फिर तू कित्थों लै लिया है, एक बड़ी सत्कारयोग संस्था दा नां लैके कहिंदा जी पुच्चो दी मंडी वालियां कोलों नाम लिया है, पुच्चो मंडी बाबा हरनाम सिंह साहब बड़े जीवन वाले हुए ने, बड़ी करनी वाले, बड़ा सिमरन व्यासी रूह हुई, रब दे चरणा नाल लपटी हुई रूह रही, मैं कहा पुछो मंडी वाले दा नाम ते मैं सत्कार नाल सुनिया, देखिया तो नहीं कदी, वह नाम देंदे ने, कहिंदे जी उन्हां दी एक शाखा है मलूका पिंड बठिंडे जिले च, मैं कहा जी उत्थे की है, कहिंदा आओ मैं तुहानू घर जाके विखाउणा, ध्यान देना आखो सतनाम श्री, जितना दा भाई जरनैल सिंह साहब दा शरीर है ना, इतना दी पग, इतना दा कमीज पजामा, करण वरड़ी दाढ़ी, उस बाबे दी नाम उहदा बलविंदर सिंह, कहिंदा मैनू उहने नाम दिता है, मैं कहा की नाम दिता है दस देंगा, कहिंदा दसदा तां नहीं, उह कहिंदे ने दसना नहीं नाम किसे नूं, मगर तुहाडे नाल वी प्रेम पै गया, मैं दस दूं उहने नाम की दिता, ध्यान दिओ, मैं कहा की नाम दिता है, तुसीं हैरान हो जाओगे, इन्हां कालियां भेडां नूं कित्थों फड़ोगे हुण, इन्हां नूं कित्थों फड़ोगे, राधा स्वामी का पता लग गया कि साडे दुश्मन ने सानू तोड़ दे, निरंकारियां का तो पता लग गया, आ जिहड़ियां सिक्खी भेस विच कालियां भेडां इन्हां नूं की करोगे, आखण लगे जी उहने नाम दिता, मैं की नाम दिता है, कहिंदा एक ओंकार सुनियो, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुर प्रसाद ओम, इन्ना लिख के ना एक ओंकार सतनाम ते नाल जोड़ता ओम, फिर अगे सुनो, बैठा पुत बैठा बैठा, इना दे के
ਨਾਲ ਓਮ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਜੁਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਓਮ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਰੀ ਅੰਗ ਕਰੀ ਅੰਗ ਸ਼ੇਵਾਏ। ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦੇ ਚ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਚੋਰ ਵਾਰਤੇ ਨੇ ਸਮੇਂ ਨੇ। ਹੈ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁੱਚੋ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਤੁਰੇ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਜਿੰਨੇ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਏ ਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ। ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਓਮ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੀਏ ਅਪਾਰੇ ਹਰੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ਸ਼ਿਵਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜੂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਮਿਲਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੇ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪਿਓ ਪੋਲ ਖੰਡੇ ਤਾਰ ਪਿਓ

जन्म सोहेला हो जन्म सोहेला हो ते फिर घर खड़े आने मेनू वखाया अजीबो करीब मंजा रखिया है मंजे दे उत्ते बलविंदर सिंह दी फोटो लाई फोटो दे कोल चोर रखिया है मैं क्या कदी आया है कहिंदा आया मेरे घर मैं क्या ओदे सामने ओदी फोटो दे चोर करदा सा कहिंदा जी ओदी सामने ओदी फोटो दे चोर करदा सा आखिर मन विच की छुपिया इन्हां लोकां दे शर्म भी नहीं आउंदी लज्जा भी नहीं आउंदी कि एक बंदा होके मेरी फोटो दे उत्ते कोई चोर करे चलो मगरों कोई अज्ञानी करे चवर तख दा मालिक ते धरती ते इको ही गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जी ते चोर हो सकता है होर किसी चोर नहीं हो सकता 1978 दे विच जिहड़े 13 सिखा गुरमुख प्यारिया ने शहीदी पाई सी इसे करके पाई सी कि निरंकारी बाबा अपने सिर ते चोर करवाउंदा सी कहिंदे असीं नहीं वेखणा चोर हो सकता है ते केवल गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते हो सकता है ते गुरमुख प्यारे इहदी फोटो दे उत्ते उहने चोर रखे ते चोर करदा है ते मालक दे गुटके उहने मंजी दे थले रखे जांदिआं दास ने पहलो मारी फोटो भवां के उहदी चुक के ते फोटो सुट के मैं कहा सजना इस मंजे दे उत्ते ए चादर जिहड़ी नापाक होई है दी फोटो दे नाल इहनू चुक इत्थे पवित्र चादर विछा जे गुरु दा अमृत लैणा ही ते इस मंजे दे उत्ते हुण पोथियां रख जिथे अगे फोटो सी पोथी परमेश्वर का थान उहनू थां दे जिहड़ी पोथी परमेश्वर जोगी इस करके गुरमुख प्यारे बचना है ते अंदरों अपने उस मालक लई कहना है एक छिन दर

बेशुमार अथा अगणत अतुल ज्यों बलावहो ज्यों बलावहो त्यों नानक दास बोले ज्यों बलावहो त्यों नानक दास बोले तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी अन झंझ गात अन रंज बात अन झंझ गात अन रंज बात वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरमुख प्यारियो गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

बारक बारक मुख मांगे सो देना, बारक मुख मांगे सो। ए बन गया मेरा पुत, ते आज तो हुण जो मेरा पुत मुंह चो मंगे इनू देना है। ओ आर्डर करके मुड़िया, उन्हें कह दिता, गया कोल गल नाल फिर मत्था चुमया, गल नाल लाया ते आख्या मैं कह दिता है दाता देने वाले नू, सचेत होके बैठो, मैं कह दिता है। आके गए ना कि बारक मुख मांगे सो देना, उन्हें आख्या पिता कृपाल आ गया है की नी, बारक मुख मांगे सो देना। उन्हें ते ए गल कह के मुड़िया, ते पिछे बालक ने आख्या मेरी ते हुण भोखी कोई नहीं रह गई, मैं मंगा की। नानक बारक दर्स प्रभ चाहे, हुण मुक गए ट्रैक्टर मंगने, मुक गईयां गड्डियां मंगणियां, मुक गईयां दुनिया दीयां दौलतां, हुण ते नानक बारक दर्स प्रभ चाहे। बोलो नानक बारक, हुण ते इहनूं पता लग गया असली दात की आ। देख जीवां गुर तेरा दर्शन।

जब आद सच नानक खुशी पे सच जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख प्रधान दासन दास कह जन नानक

सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगादि सच खैति सच नानक खुशी भी सच

केवल पुत्र धियां समगरी जां ऐशवर्ज नहीं, आनंद असल विच अंदर दी एक अवस्था है जिहड़ा गुरु तो मिलता है। साहब ने शब्द वरते आनंद, आनंद सब को कह, आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते, कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल वेख कटे। गुरु होवे जिहड़ा कृपा करके अंदर दे पाप खत्म कर देवे, कर कृपा किल वी कटे, ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह टुटा। गुरु ओ है जिहड़ा बंदे दे अंदर दे मोह नूं तोड़ देवे, अंदर दियां वकारां दियां तंदां तोड़ देवे, अंदरों जिनका मोह टुटा। तिनका शब्द सच्चा सवारिया, साहब कहन लगे कह नानक एहो आनंद है, आनंद गुरु ते जानिया। किन्ने असल विच आनंद देवे कि अंदर दे पाप खत्म हो जाए, अंदर ज्ञान दा चानण हो जाए। मैं बेनती कर रहा कि गुरु कौन है, साहब ने पहला प्रमाण दिता कि जिस मिलिया मन खोए आनंद सो सतगुर कही है, मन की दुविधा बिनस जाहे, जिन्हों मिल के अंदर दी दुपांति द्वैश खत्म हो जाए, हर परम पद लई है ओ है गुरु। होर सुखैन तरीके नाल समझना होवे ते मेरे दातार जी दे अमृत बचन आप सुखमनी साहब जी दा पाठ कर दे, जेड़े सज्जन नहीं करदे ओ भी जरूर यतन करन के गुरु अर्जुन देव जी दी अमृत गुरबाणी नूं पढ़न दा। हजूर ने एक सलोक विच सतगुरु दी परिभाषा दिती ते उत्थे सतगुरु दी परिभाषा की ये शब्द वरते ने कि सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिस का नाउ, जिन्हें सत पुरख नूं जानिया है जिहड़ा परमात्मा दे विच अभेद है, सच जाणो निरंकार दा साकार रूप ही ओ है जिन्हें सत पुरख नूं जान लिया है। सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिस का नाउ, तिस कै संग सिख उदरै नानक हर गुण गाओ। जिस सतगुरु दे चरणा नाल जुड़ के सिख दा पार उतारा हो जाए, जिस सतगुरु दे चरणा नाल जुड़ के बंदे नूं परमेश्वर दा नाम अंदर वस जाए। हजूर ने कहा ये सतगुरु है। सतगुरु ने एक होर प्रमाण दिता, ओ कह के अगे तुरिए कि गुरु कौन है। धन गुरु ग्रंथ साहब की अमृत बाणी भी साहब फरमाते ने, कहिंदे गुरु ओ नहीं कि जिहड़ा दर दर ते अपने पेट की खातर मंगण तुरदा है, कहिंदे ने गुरु ओ नहीं जिहड़ा अपनी खौमे नूं अंदरों पालदा पिया है, कहिंदे ने पूरे गुरु दी तां लक्षण ही इह वे कि पूरा गुरी बेमुहताज है, ओनू किसी के दर तो मंगना नहीं पैंदा, पूरा गुरु दाता है। दूजा शब्द वरत्या केवल दाता नहीं, पूरे गुरु कोल इन्नी कु ठंड है कि तपदे हिरदे भी शांत कर देंदा है। तीजा शब्द वरत्या कि पूरा गुरु तो एक बलदे हुए दीवे की तरह है। ते तिना अखरां तिना शब्दां नू किते सी पढ़ लईए कि गुरु की परिभाषा की है, गुरु दाता हुंदा है, गुरु ठंड का घर हुंदा है, ते गुरु जो ने वह दीवे की तरह चानण देंदे ने। सतगुरु ने इत्थे सतगुरु की परिभाषा देंदे आ शब्द वरते, कहन लगे गुरदाता गुर खिवै घर, गुर दीपक त्यों लोए। सतगुरु एक दाते की तरह वो रहमतां वंडदे ने। एक बेनती करा गुरमुखो, अज जना खना अपने शब्द नाल गुरु शब्द जोड़ी जांदा है ते असीं लोक मन्नी भी जांदे आ, क्योंकि धन गुरु ग्रंथ साहिब दे शब्द नूं कमाणा ना अलूणी सिल चटना है। यह खंडे धार गली अत भीड़ी वाला मार्ग है। साहब कृपालू जी दी बचना विचो मैं बेनती करनी है कि पूरा गुरु कौन है। पूरा गुरु मंगता नहीं, दातार कहिंदे ने जिहड़ा गुरु अपने आप नूं कहे कि मैं चेलियां दा उधार करना वा ते आप केवल ढिड दी खातर चेलियां दे घर विच बह के साज वजाई जाए, कहिंदे ने सजना उहनूं कदी गुरु ना तूं मन्ने। साहब ने शब्द वरते ने, कहन लगे गुर पीर सदाए मंगण जाए तां कै मूल ना लगी है पाई। दातार ने एक बचन होर बाणी विच कहे, कहन लगे वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर। ए भी तां गुरु शब्द वरते ना, अपने आप नूं कही जाना सी गुरु आ। साहब कहिंदे ने नहीं, चेलियां दे इशारियां ते गुरु नचदे ने। वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर, उड उड रावा झाटा पाए वेखै लोक सह कर जाए, ते उन्हां तों परमार्थ नहीं कमाया जांदा, रोटियां कारण पूरा ताल आप पछाणै धरती नालों गुरु नहीं। ध्यान दिओ, एक होर मैं बेनती कर दिया। देखो

0: दिन मनाउंदा है, हालांकि वह 90-100 साल पहला की घटना है। मौत का भरोसा ही नहीं है, 95 मिनटा बाद आ जाए, सकेंटा बाद आ जाए, हुणे आ जाए, पल बाद आ जाए, पर मौत का ना कन्ना दे अंदर पैंदिया सार अंदरों हिल जाता है, कंब जाता है। नहीं नहीं नहीं, अजे ते जीवन की तमन्ना है, अजे मैं मरना नहीं चाहता। तो भगत फरीद साहब जी कहन लगे, जो ताकतवर देवता है मौत का, ये जद आ जाता है तो फिर ये गले नूं दबा देंदा है, सवासां दी माला बिखर जाती है, इनू नाल चलना पैंदा। इस तो अगे बाकी दे बचे सलोक इदी व्याख्या आउन वाले कल नूं मैं
1: लंगन देहु प्रभ कर तो उदर गोपाल मोहे।

जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुम्हारी तिस राखो हो कृपा तार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो हो लाज मुरार वाहे गुरु साहिब जी।

अक्सर आपां चलने आ जिहड़े वड्डियां वडेरियां ने पूरने पाए ने गुरु साहिबाना ने पैगंबर जना ने जिथे कदम टकाए ने उन्हां कदमां दे चिन्ह वेखदे होए मेरा मतलब उन्हां गल्लां बातां नूं मनदे होए उन्हां नुक्तियां सिद्धांतां नूं अपनांदे होए अक्सर मनुख चलदे ने। अगर कोई हिंदूइज्म दे अंदर चल रहा है तो वह श्री राम ते श्री कृष्ण जी की गल करके चल रहा है। अगर कोई बुद्ध धर्म दे अंदर चल रहा है तो वह गल करदा है पहला महात्मा बुद्ध की, महात्मा बुद्ध इस तरह चलते रहे, महात्मा बुद्ध इस तरह करते रहे, फिर वह जीवन की चाल चलनी शुरू कर देता है। अगर कोई जैन मत का धारनी बन के चल रहा है वो यही एग्जाम्पल देता है कि साढ़े महावीर जैन तकरीबन अज तो ढाई हजार साल पहला कह लगे वह आए तो उन्होंने इस तरह दुनिया के अंदर मृत मंडल के अंदर आके लोगों को उपदेश दिता, इस मार्ग के पांधी बन के चले ते जैनी कहिंदे ने असीं तां चल रहे हैं। हुण कोई सिख नूं पुछे भी तुसीं किस मार्ग से चलना चाहोगे ते सिख दे कोल यही जवाब होएगा ना कि असीं गुरु नानक साहब जी दे बनाए मार्ग ते चलांगे। होर ते कोई जवाब नहीं है ना कि गुरु नानक साहब जिस मार्ग ते चले असीं उस मार्ग ते चलांगे। फिर गुरु नानक पातशाह महाराज जी ग्रिस्त दे मार्ग दे अंदर भी चले ने। ग्रिस्त दे मार्ग तो उपराम होना गुरमत दा असूल भी नहीं ते गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी दा बख्शिया सिद्धांत भी नहीं है। अगर कोई ग्रिस्त मार्ग नूं छड के चलन दा यतन कर रहा है मैं यही कहांगा वह पहले कदम दे उत्ते पटकदा होया नजर पै रहा है, पहले कदम दे उत्ते थिड़क गया है। क्योंकि गुरु साहिबाना ने जद यह मार्ग अपनाया है असीं इस मार्ग नूं नफरत करनी, असीं इस मार्ग नूं माड़ा कह के इस मार्ग नूं छड देना ते एक दूसरा मार्ग अपना के अपने आप नूं ज्यादा पवित्र जान लेना, दूजियां नालों महान ते अगे मन लेना, यह साड़ी अपनी अग्ञानता या साड़ी अपनी भुल है। गुरु पातशाह ग्रिस्त मार्ग दे अंदर रहे, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ग्रिस्त मार्ग दे अंदर रहे, दसे गुरु साहिबान ग्रिस्त मार्ग दे अंदर रहे, जिन्हें आप भगतां दी बाणी ग्रिस्ती होए ने, बाबा फरीद साहब जिन्हां दे सलोकां दी व्याख्या मैं लड़ीवार तुहाडी अरज कर रहा, बाबा फरीद साहब जी दे भी 6 लड़के ने ते 2 लड़कियां ने, 8 संताना नूं जन्म दिता है भगत फरीद साहब जी ने, जिन्हां दी बाणी आप प्यार सहित रोज रोज सरवण कर रहे हो। फिर गुरु नानक साहब जी ने सानू ग्रिस्त मार्ग दा साधु बनाया है, ग्रिस्त तो त्यागी होके साधु बनन दा उपदेश नहीं दिता, उन्हें आख्या ग्रिस्त दे विच रह के साधु बन, मैं इस मार्ग नूं जन्म दे रहा। तो खैर अगर बाहरों वेखिए गुरु साहिबाना नूं ते बाहरों उन्हां दे घर दे अंदर सुपत्नी, उन्हां दे घर दे अंदर तियां दा जन्म, उन्हां दे घर दे अंदर पुत्रां दा जन्म, उन्हां दी जेब दे अंदर साडे नालों धन ज्यादा, उन्हां दा घर बार साडे नालों चंगा, उन्हां दे घर दे अंदर साडे नालों पदार्थ भी वधीक, भावें संगतां ही लियांदियां ने पदार्थ भी वधीक, माया वध परिवार कुटुंब कबीला महल माड़ियां दे अंदर वसदे होए गुरु साहिबान नजर पैणगे। अगर बाहरले तौर ते वेखो, अगर अंदरों वेखो किसी दे कोल इन्नी बारीक बीनी बारीक निगाह होवे जो पातशाह नूं अंदरों वेख सके ते अंदरों वेखोगे वह नरोल परमात्मा दे वर्गे नजर पैणगे। बाहरों संसारी नजर पैणगे, अंदरों निरंकारी नजर पैणगे। बाहरों वेखोगे मायावी नजर पैणगे, अंदरों वेखोगे ते माया दे पति खुदावंद करीम दे नाल जुड़े नजर पैणगे। मैनू भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी का एक बचन चेते विच आउंदा है, ऐलानिया कहिंदे ने कि जाहर अंदर माइले फरजंद जन, फारसी का लफज फरजंद, फरजंद कह देंदे ने पुत्रां नूं, जन जजे दे पैर हेठ बिंदी ला के, जन जन का मतलब औरत, ते जे बिंदी ना लाओ इकला पढ़िए जन, बिरथी कदे ना होवे जन की अरदास। इथे जन का मतलब है सेवक, पर जिथे गुरबाणी दे अंदर आउंदा है जन पिसर पदर बिरादरां कसनेस दस्तंगीर, इथे जन ते जन का मतलब हुंदा है औरत, फारसी का लफज है। भाई नंद लाल साहब जी कहिंदे ने कि जाहर अंदर माइले फरजंद जन, गुरु साहिबाना नूं वेखो बारों बारों ते तुहानू नजर पैणगे कि उन्हां दे कोल जन वी है, जन का मतलब औरत, उन्हां दे कोल फरजंद ने, फरजंद

शरण ठाकुर प्रभ तुम्हारी, तिस राखो हो कृपा तार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो हो लाज मुरार। वाहे गुरु साहिब जीओ, किजना बुझे किजना सूझे,

जी शांति ते कोई नहीं मिलती, रब मिलता ते है नहीं। 20-20 साल हो गए ने गुरुद्वारे आउंदिया कोई गल बनी ते नहीं, तां नहीं बन रही क्योंकि केवल आ रहे हैं गुणा नूं अपना नहीं रहे, ते जिन्ना समा गुणा नूं अपनाओगे नहीं उन्ना समा मेल होना कोई नहीं। खैर भगत फरीद साहब जी कहन लगे कि जे जाना शहो नंडड़ा, ओ मेरा परमात्मा शहो बाल वर्गा है, नंडड़ा मैंने छोटे बाल वर्गा है, ते मैं उस परमात्मा वर्गा अपने आप नू बना लेंदा जीवन दे अंदर चलद्या चलद्या रहिंद्या रहिंद्या। एक बचन फरीद साहब जी एक कह रहे ने ते तां कह रहे ने ताकि साडा मेल उस परिपूर्ण परमात्मा दे नाल हो जाए। अगला बचन कहन लगे जे जाना लड़ छिजना पीड़ी पाई गंड, जे मैं जानदा कि बुराइयां दे कारण विकारां गुनाहां दे कारण परमात्मा नालों मेरी विथ पै जानी है, परमात्मा नालों मेरी दूरी हो जानी है, लड़ छिजना लड़ मैंने पल्ला छिजना मैंने छुट जाना, मेरा पल्ला रब जी दे हथों छुट जाना, ते पीड़ी पाई गंड पीड़ी मैंने पक्की, मैं अपने पल्ले दी रब जी दे पल्ले दे नाल गंड पा देंदा ते पीड़ी पा देंदा। जद भी गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी दे अंदर बची बच्चे दा आनंद कारज हुंदा है ते पल्ला फड़ाया जांदा है वर दे हथ दे अंदर, वरदा पल्ला फड़ाया जांदा है सुहागन दे हथ दे अंदर, पल्ला फड़ के लावां हुंदियां ने ना चार लावां गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी विच परिक्रमा करदे ने, दुल्हा दुल्हन उठ के लड़की लड़का उठ के लड़की ने पल्ला फड़िया हुंदा है, ते जे ओ पल्ला फड़े ना जां पल्ला छड्डदा है ते फिर कादा आनंद कारज, फिर ते कागजी विआह है ना, फिर आनंद कारज कादा होया। इस तरह ही जे परमात्मा दे देश पहुंचना चाहुंदे हो, परमात्मा वर्गे बनना चाहुंदे हो, ते ओदे पल्ले दे नाल अपने पल्ले दी गंढ घुट के बननी पैगी। क्यों घुट के बननी पैगी? क्योंकि भीड़ भड़का बड़ा है, ते भीड़ दे अंदर किधरे मेरी गंढ परमात्मा दे पल्ले नालों खुल ना जाए भीड़ दे कारण, ते भीड़ कादी है? आम लोकां दी भीड़, धक्के मारन वालियां दी भीड़। एक पासे काम अपनी फौज लेके चल रहा है गंढ नूं खोलण वास्ते यतन करदा है, दूजे पासे क्रोध अपनी सेना लेके चलदा है ते बची हुई गंढ नूं ओह खोलण दा यतन करदा है, तीसरे पासे निंदा है हंकार है मोह है लोभ है, ये सारे गुनाह अपनी अपनी फौज लेके तैयार खड़े ने, ते खड़े किस वास्ते ने? तुहाडी जिहड़ी गंढ बची है ना रब जी दे पल्ले दे नाल उस गंढ नूं खोलण वास्ते। ते खिमा करियो जिहड़े तुसीं धर्म दे राह ते चलण वाले हो ना, धर्म दे मार्ग ते तुहानूं खास ध्यान रख के चलना पैणा। अगर तुसीं ध्यान ना रखिया ते किधरे भी चलदियां चलदियां काम दी लपेट विच आ के गंढ अपनी खोल पाओगे, किधरे क्रोध तुहाडी गंढ नूं खोल देगा, किधरे हंकार किधरे मोह किधरे लोभ किधरे निंदा किधरे चुगली, ये सारे इस ताक दे अंदर ने कि कदों इहदा गंढ नालों ध्यान हटे, जिहड़ी पीटी करके गंढ बद्धी है उहदे नालों इहदा ध्यान परां हटे ते असीं इहदी गंढ नूं खोल दईए, इहनां दोवां दे अंदर दूरी पैदा कर दईए, पति ते पत्नी दे अंदर, परमात्मा ते आत्मा दे अंदर असीं ना दूरी बना के रख दईए। हुण दूसरी बेनती, आपां अक्सर एक गल कहिंदे आ और पंजाबी दे अंदर ठेठ भाषा विच इह गल आम वरतों विच आउंदी, बई जे मैनूं पता हुंदा बई मेरा इत्थे आउण तों बाद नुकसान ही होणा है ते मैं इत्थे कदी आउंदा ही ना, कहिंदे आ ना बई जे पता हुंदा, जे मैनूं पता हुंदा कि आ चीज खाण दे नाल मेरे तन दे अंदर रोग वधना है ते इह पदार्थ मैं भुल के मूंह तक लै के जांदा ही ना, इह कहिंदे ना जे पता हुंदा, जे पता हुंदा भी ऐस मार्ग ते चलन तो बाद अज एक्सीडेंट होना है ते मैं इस रोड दे उत्ते कदी निकलदा ही ना, जे पता हुंदा कि बोस दे सामने ऐ कुछ बोलन तो बाद रोजी रोटी बंद होनी है ते मैं कदी गला उच्चा करके बोलदा ही ना, ये कहने ना भी जे पता हुंदा, ये ना कहना पै कि जे मैनू पता हुंदा। गुरु ग्रंथ साहिब जी ने बाणी रच के साडी झोली दे अंदर पाई तेरी जे नूं खत्म करन वास्ते, तेनू ए बहाना ना मिले कि तू ए कह ही ना कि जे मैनू पता हुंदा।
सतगुरु जी बयान कर रहे ने इस तरह हुंदा है, तेरी गंढ नूं खोल देंगे ते सारे दे सारे औगण।

इच्छा रहे आ दूर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरबान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पवित्र अते निघी गोदा आनंद माण रहे सब माई भाई सतसंगी जनों, मन बिरतियां एकागर करके गुरु दरबार विच बैन अते सुनन दी कृपालता करियो। एक नुकता हमेशा ध्यान दे अंदर रखन योग है, एक वक्त दे अंदर एक कम करन दी अपने आप नू आदत पाओ। ऐस वक्त तुसी ना ते दुकान उते हो, ना ऑफिस दे अंदर हो, ना अपनी कोई होर किरत विरत कम धंधा ही कर रहे हो। शरीर करके इस वक्त कोई होर कम धंधा करना भी चाहो ते कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि शरीर ते गुरु दरबार विच है। तो फिर जे शरीर गुरु दरबार विच है ते फिर इस तरह का सुभाव बनाओ कि उन्ना समा मन भी गुरु दरबार विच ही रहे। इस वक्त अगर मन करके तुसी ऑफिस वे चले गए, दुकान ते चले गए, किरत विरत वे चले गए, वो भी नहीं होएगी ते जो इथे हो रहा है वो भी पल्ले नहीं पाएगा, उहदा भी लाभ पूरा पूरा नहीं मिलेगा। जितना समा गुरु दरबार दे अंदर तन हाजर रहे यतन करना चाहिदा है, उन्ना समा नाल लगदा मन नूं भी बिठाउंदा। कोई कम विगड़दा होवे उठ के जा सकते हैं, तन करके भी चलो मन करके भी उथे रही है, पर जिन्ना समा इथे हां इथे ही रहने की कृपा करियो। चल रही लड़ी वार कथा विचार भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों आप रोज सवेर दे वक्त सुनदे आ रहे हो। अज जो दो सलोक बाबा फरीद साहब जी दे आप संगतां दे सन्मुख पढ़े गए, पहला श्लोक है फरीदा जां तो खट्टन वेल तां तू रत्ता दुनी सियों। कहन लगे जेड़ा खट्टी खट्टन दा वेला सी, खट्टन मैंने कमाऊं, वेल मैंने वकत, जेड़ा खट्टी खट्टन दा वकत सी, लाभ कमाऊं दा वकत सी, तां तू रत्ता दुनी सियों। उस वकत ते तू इधर ध्यान ना दिता ते दुनियादारी दे तंदे दे अंदर उलझिया रहा। कहन लगे ध्यान ना दिता। एक बेनती मैं होर भी करा, उम्र दे तकाजे दे नाल हर काम करन दा अपना अपना साडे समाज दे अंदर विहार प्यार बनिया है। उम्र दे तकाजे दे नाल बचपन दे अंदर साडी जिम्मेवारी स्कूल दे अंदर जाके चार अखरां दी तालीम लेनी है ते बच्चा स्कूल दे अंदर चला जांदा है। जवानी दे अंदर किरत विरत धंधा करना ते बंदा कर रहा है। बुढ़ापे दे अंदर चाहिदा है कि चलो जो हुण कमाया है आराम दे नाल उनू बह के भोगे भी, धीआं पुत्रां दे अंदर बह के आराम दे नाल चल पाए, और इस तरह होना भी चाहिदा। परमात्मा सब दीआं लोड़ां पूरीआं भी करे। अर्ज मैं ये करनी चाहुंदा सां कि बचपन दा समा पढ़ाई वास्ते तलीम वास्ते बकायदा नियुक्त है। ते जे बंदा ये गल कहे कि बचपन ते मैं अचेत पुणे दे अंदर गवा लवां, बच्चे नूं स्कूल की तोरना है, बच्चा रोंदा है, बच्चे दा मन नहीं करदा, इनू स्कूल ना तोरीए, जेडे मां बाप बच्चियां दे उत्ते इस तरह की दया कर जांदे ने उहनां दे बच्चे उहनां नूं सारी उम्र वास्ते कदी बख्शदे नहीं। जदों बच्चे वड्डे होणगे बख्शणगे नहीं। अगर तुसी जवाब वजों ये गल कहो कि बेटा उदों तो रोंदा बड़ा सी, तैनू तां स्कूल विच नहीं तो रहा, उदों तैनू रोज रोज स्कूल विच लालच दे के जिद करके भेजना पैंदा सी, तू जाके राजी नहीं से हुंदा, रोंदा बड़ा सी। असी सोचिया कि चलो तैनू स्कूल विच ना ही तोरीए, छह दे घटना तेरे लिए दुखदाई होवे, दुख वाली होवे। ते बच्चा अगों परतवा जवाब यही देगा कि मैं बेसमझ से, मैनू समझ नहीं सी,
मैं सी उस वक्त न्याणा, मां बाप नूं इह गल कहेगा तुसी ते न्याणे नहीं सी ना, तुहानूं ते पता सी ना मेरी उमर है पढ़ाई करन दी ते मैनूं पढ़ाया क्यों ने, मेरी उमर है स्कूल दे अंदर जान दी ते मैनूं भेजिया क्यों ने। ठीक है मैं रोंदा सां, मेरा रोना तुसी वेख लेना सी, मैनूं चिड़क दे के लोरी दे के किसी भी ढंग दे नाल तोर दे, मेरा पला इसे अंदर ही सी। जो बच्चा जीवन दे अंदर बालपन दे समय नूं अजाई गवा लैंदा है खेडां दे अंदर या सौं के अचेत पुणे दे अंदर अपने ओ समय नूं बर्बाद करदा है, ओ जवानी दे दौर विच पहुंच के ना ते सफल इंसान ही बनदा है, ना डॉक्टर ना टीचर ना साइंटिस्ट ते ना चंगी जॉब दा ओनूं आसरा ही मिलदा है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जॉब मिलनी है अगे आड़ के, ओदा बेस बनाउन वास्ते है बालपन दा समा, ते जिस मकान दी बुनियाद ही नहीं जिदा बेस ही नहीं ओ मकान खड़ा के सासरे दे उत्ते होवे। असीं इह ते चाहुंदे आ कि पक्के महल साडे उसरन, पर इह नहीं चाहुंदे कि ओदियां बुनियादां वी पक्कियां बनाईयां जाण। इक बेनती मैं करदा चला, पक्कियां बुनियादां दे सहारे पक्के गगन नूं गोसा देण वाले मकान उसारे जांदे ने। जिन्हां मकानां दीआं बुनियादां रेते दे नाल भरीआं ने कच्चीआं ने, उन्हां बुनियादां दे सहारे पक्कीआं इमारतां उसरदीआं वी नहीं, पक्कीआं इमारतां खड़ीआं वी नहीं हुंदीआं। बेस बनाउण दा इक समां हुंदा है। अगर किसी ने पढ़ लिख के वकील बनना है ते उहनूं बड़े लम्मे समय तो पढ़ाई दे अंदर रह के किताबां दे नाल मगजमारी करके अपना बेस कायम करना पैंदा है। मैं आउण

ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੂਜਨ ਤੁਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਸਲੋਕ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਛ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਫਰੀਦਾ ਮੈਂ ਭੁਲਾਵਾ ਪੱਗ ਦਾ, ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋਏ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਮੈਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਖਬਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਗਰ ਆਈਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਆਈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਨੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਨ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਦੀ ਲੋਚਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਘਰ ਬਾਰ, ਮੋਟਰ ਕਾਰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸਦਾ ਰਸਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਾਹਰੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਦ ਧਿਆਨ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਮੈਲ ਹੀ ਮੈਲ ਪਈ ਹੈ, ਤੋ ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ। ਆਪਣੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਤੋ ਖੈਰ, ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਦੇ ਬਾਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸ਼ਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸ਼ਾ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਰਨਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਅਵਤਾਰੀ ਤੇ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸ਼ਾ ਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਲ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਇਹ ਸਾਧਨ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜਬੀਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਲ ਚਾਹੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਧਨ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ।
मैल हटाना इहदा लक्ष्य है। साधन बदलते रहे ने, हुण भी बदल रहे ने, बदलते रहेंगे। साधन दे नाल फर्क नहीं पैंदा, गल ते इह है कि अंदर मैल ना रहे, कपड़े दे उत्ते मैल ना रहे। एक बेनती मैं भी करदा चला, बाहर दी मैल जो साडे शरीर जां शरीर ते पाए हुए कपड़िया दे उत्ते या सज्जे खब्बे मैल दिसदी है, इह गर्दो गुबार मिट्टी घटे दे कारण है। बाहर दी मैल गर्दो गुबार मिट्टी दे कारण है, ते अंदर दी मैल बुरा वेखना, बुरा बोलना, बुरा सुनना, बुरा सोचना, इस दे कारण है। जो अंदर मैल बनती है वो बुरा वेखन बोलन सोचन करके बनती है, जो बार मैल बनती है वो मिट्टी कट्टा हनेरी तूफान गर्दो गुबार इहदे कारण मैल बनती है। बार दी मैल अंदर नहीं जाती है, और अंदर दी मैल ये साडे इंद्रियां दे राही बदल बदल के बार आउंदी रहिंदी है। तन गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी की पवित्र बाणी है, कहन लगे परिये हाथ पैर तन देहे पानी तोते उतरस के है। ये बाहर दी मैल है, अगर हाथ पैर भर जांदे ने तो पानी नू वरतों विच लै ओ मैल उतर जाएगी, साबण नू वरतों विच लै ओ मैल उतर जाएगी। परिये हाथ पैर तन देहे पानी तोते पानी दे नाल तो लो उतरस खेहे, लगी हुई मैल उतर जाएगी, चली जाएगी। मूत पलीती कपड़ होए देसा गोन लईए उह तोए, अगर कपड़े भी किधरे चिकड़ लवरेज हो गए ने ते कहन लगे साबुन दी वरतों करन दे नाल ओ भी उजले हो जाणगे, साफ हो जाणगे। पर किसी ने प्रश्न किया, साहब जी अंदर दी मैल नूं धोण वास्ते केड़ी सरफ ते केड़ा साबण ते केड़ा पानी वरतों विच लियाईए, मैल अंदर चली जाए ते अंदर दी मैल नूं बाहर कढ़ना होवे धोना होवे तो फिर प्रश्न साडा ए धोवेगी किवें। हजूर कहिंदे ने कि परिये मत पापां कै संग उह धोपै नावें कै रंग। गुरबाणी दे अंदर लफज जिहड़ा आया ना वह पाप आया, अपराध नहीं आया। इस जगह दे उत्ते इस तरह नहीं है कि अपराध लफज आया नहीं, पर इस जगह दे उत्ते कहन लगे परिये मत पापां कै संग, क्योंकि पाप बीज है ते अपराध उस बीज तो वधन फुलन वाला दिसन वाला बूटा है। पाप जड़ है ते उस पाप दी जड़ दे सहारे दे उत्ते जिहड़ा पनपण वाला है वह अपराध नाम का बूटा है। इस तरह कह लो पाप अंदर हुंदा है ते अपराध बाहर हुंदा है, है पावे दोवे गुणा दोवे दोष दोवे तरह की मैल है, पर पाप मन दे नाल संबंध रखता है ते अपराध तन दे नाल संबंध रखता है। जो तुहाडे अंदर माड़ी सोच चल रही है, बुरी सोच चल रही है, कामुक सोच, क्रोध, निंदा, चुगली, ईर्षा, तरह तरह दियां बुरियां विचारां जो चल रही ने, उहदा नाम पाप है। उस पाप तो अगे आण के जिहड़े बुरे कर्म करने असीं शुरू कर दिंदे आ उहदा नाम अपराध है। अपराध नूं डर हुंदा है हथ कड़ी दा, कानून दा, समाज दा, पर पाप नूं ते भी डर नहीं है, क्योंकि पाप तां किसे दी निगाह जांदी नहीं है। पाप ते किधरे मंदिर मस्जिद दे अंदर बह के भी कीता जा सकदा है। खिमा चाहवांगा की सोच रहे हो तुसीं इस वक्त मन दे अंदर, कोई दूसरा ते नहीं जानता, बिल्कुल तुहाडी बगल दे अंदर तुहाडे नाल बैठा होया दूसरा प्रेमी दूजा सतसंगी नहीं जानता तुहाडे मन दे अंदर की विचारां दी तारा चल रही है। पर तुहाडे तन नूं ते आपां वेख ही रहे हां, सारे एक दूजे नूं वेख ही रहे हो कि तन आराम पूर्वक बैठा है, मन भी बैठा है नहीं बैठा है ते तुहानूं पता है जां सतगुरु नूं पता है। तो पाप ना कानून दी पकड़ विच आउंदा है, ना समाज दी पकड़ विच आउंदा है, अगर आउंदा है ते धर्म दी पकड़ विच आउंदा है, निरंकार दी पकड़ विच आउंदा है। निरंकार जानदे ने अंदरों असी मैले हां, अंदरों असी पवित्र हां, निरंकार जानदे ने। दूसरे जो भी फैसला लेंदे ने वो साडे बाहर मुखी जीवन नू वेख के फैसला लेंदे ने। साडा बहना उठना चंगा है, तुरना फिरना चंगा है, बोल बाणी चंगी है,
लोग कह देंदे ने गुरमुख है, पर मैं गुरमुख हाँ मनमुख हाँ यह मैनू खुद नू पता है ते या सतगुरु साहब जी नू पता है, गुरु ग्रंथ साहब जी नू पता है। खैर मैं एक बेनती करदा ही चला, डॉक्टर इकबाल तो इस तरह भी कहिंदे ने कि एक ही चेहरे पे हजार चेहरे बना लेते हैं लोग, यही चेहरा गुरुद्वारे दे अंदर कुछ होर दिसदा है, यही चेहरा दुकान दे उत्ते किसे होर रंग विच दिसदा है, यही चेहरा किधरे कारोबार दे अंदर होर रंग पकड़ के अपने उत्ते जमाया होया दिसदा है, यही चेहरा मां दे सामने हो रे, पत्नी दे सामने हो रे, धी दे सामने हो रे, समाज दे सामने हो रे, ते गुरुद्वारे दे अंदर हो रे। गिरकत अपने रंग बदलदा है, मनुख अपने चेहरे दे मखौटे बदलदा है, ते मखौटे बदलन दी इहनूं बड़ी चंगी तरह जांच है। मखौटे किवें बदलने ने, किधरे गमी वाली जगह ते चला गया है, किधरे अफसोस करन वास्ते किसे दे घर विच जाना पिया है, उत्थे कोई सोग समाचार है, इहदे अंदर भावें गमी नहीं पर चेहरे दे उत्ते बनावटी गमी दा मखौटा पाउणा इहनूं आउंदा है कि बनावटी गमी चेहरे दे उत्ते किवें लियाई दी। किधरे खुशी वाली जगह ते चला गया है, किसे दे व्याह दे अंदर, किसे दे बच्चे दे जन्मदिन दे अंदर, किसे दे कारोबार दी ओपनिंग दे अंदर चला गया है। अंदर पावे जैलसी है, अंदर पावे ईर्षा है, पर बनावटी खुशी दा मखौटा बना के उन्हां नूं बधाई देण दी इहनूं बड़ी चंगी तरह आदत ते कुशल है। ये जानदा है कि खुशी दा मखौटा कदों पाउणा है ते कमी दा मखौटा कदों पाउणा है। खैर इह मेरा विशा नहीं सी। अंदर जो बुराई है उहदा नां पाप, जो बाहर बुराई प्रगट होके आ जांदी है उहदा नां अपराध। बस एक नुक्ता याद रखो, अपराध बाहर हुंदा है ते पाप हमेशा अंदर हुंदा है। हुण अपराध तां ही बनदा है ना जे पाप अंदर होवे, ते जे पाप ही अंदर ना रहे ते अपराध नूं पनपण वास्ते समां मिलेगा ही नहीं, अपराध बनेगा किथे। अगर जमीन विच तुसीं बीज अंबां दा बीजिया ही नहीं, अंब दी गुठली बीजी नहीं, ते अंब दा बूटा पैदा भी किवें होएगा। जमीन दे अंदर एक जिमीदार जिस तरह दी फसल दा बीज बीजदा है उस तरह दे ते बूटे पैदा हुंदे ने, दूजे ते नहीं। अगर बीज ही नहीं तो फिर बूटा भी नहीं। पाप नहीं ते कहना पएगा दुनिया दे अंदर अपराध भी नहीं दिसेगा। तो गुरु नानक देव पातशाह महाराज जी गल जड़ तो फड़दे ने, मुढ़ तो उपरों उपरों रुख दियां एक दो टहनियां कट दई है, उहदे नाल दुनिया दे अपराध पाप कतलो गारत गुंडागर्दी ये मिटने ते नहीं है। रुख दियां जड़ां अगर जमीन विच लगियां ने, उपरों उपरों पत्ते झाड़ दिओ, पत्ते नवे आ जांदे ने, फुल तोड़ लैंदे हो फुल नवे आ जांदे ने, फल तोड़ के खा लैंदे हो फल फिर समा पा के नवे आ जांदे ने, टहनियां नूं आप कट देंदे हो, दो टहनियां कट दे हो, दो दूसरी शाखा दे उत्ते दूसरे टहने दे उत्ते नवीं शाखावां जन्म लै लैंदियां, एक टहनी नूं कट रहे हो दूजी नवीं जन्म लै रही है। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि अजे जड़ मौजूद है। अगर जड़ ना रहेगे ते ना रुख दे उत्ते पत्ते आउणगे, ना फुल आउणगे, ना फल आउणगे, ना दोबारा दोबारा हरियाली आएगी। तो गुरु नानक देव साहब जी गल जड़ तो आरंभ करते हैं, कहन लगे भरिए मत पापां कै संग, अंदर किवें भरदा है पाप दे नाल। कहन लगे भरिए मत पापां कै संग, हुण अंदर दी मैल नूं धोण वास्ते ना ते कोई साबण, ना कोई सर्फ, ना कोई होर लिक्विड, ना कोई पानी नहीं धुपेगी। हुण मैल धुपेगी किवें? पुछिया हजूर फिरे मैल जावे किवें? कहन लगे ओह धुपै नामे कै रंग, धुप जाएगी, मायूसी दी लोड़ नहीं है। पर जिस साबण या निर्मल जल नूं वरतों विच लियाउण तो बाद ओह मैल जाणी है, उहदा नां है परमात्मा दे गुण, परमात्मा दा चिंतन, ओह धुपै नामे कै रंग। एक बेनती मैं होर करदा चलां, सुखमणी साहब दी पाक बाणी नूं आप उचेचे तौर ते प्यार सहित पढ़दे जपदे सुणदे वेख्या जांदा है। सुखमणी साहब दे अंदर हजूर दा प्रमाण ने सोच करे दिनस अर रात, इहनूं लफ़ज़ नूं सोच नहीं पढ़ना, सोच दा मतलब है सोचना, सोच दा मतलब है विचारना, सोच सोच दा मतलब है जिवें आपां कहिंदे आ मैं तन पवित्र रखना है, तन सुचा रखना है। सोच करे दिनस अर रात,
मन की मैल न तन ते जात। कहन लगे दिन पर रात बारो सुचा हुंदा यतन करदा रहे, बिंद बिंद हाथ धोंदा रहे, बारो तो बिलकुल पवित्रता रखण विच कामयाब दिसे। पर कहन लगे इस तरह करन दे नाल तेरे मन नू की असर पएगा। ठीक है लोकां दे सामने इन्नी को तेरी इमेज बन जाएगी बड़ा पवित्र है, बड़ा सुचा रह के चल रहा है, ए बिल्कुल भी झूठ दे नेड़े तेड़े नहीं जांदा, ब्राह्मण वांग बड़ी सुचता है, बड़ी पवित्रता है। पर तेरी उस सुचता दा मुल तां ही पैंदा है जे मन सुचा होवे। अगर मन सुचा नहीं तो फिर इस बारी पवित्रता दा ते बारी सुच दा कोई मैना नहीं, कोई अर्थ नहीं है। मेरा मतलब यह नहीं है कि आप गुरु ग्रंथ साहिब जी दी ताबिया विच बहना चाहो ते लिबड़े तिबड़े आण के बह जाओ, तन साफ नहीं चाहिदा, यह मेरा मतलब नहीं है। जिहड़ी विखावे दी वाधू सोचे मैं उहदी गल कर रहा, जिहड़ी पखंड दे अंदर लेके चली जांदी है उहदी गल कर रहा। हुणे ही आप श्री आसा जी दी वार दा कीर्तन सुन के हटे हो, पातशाह एक सलोक दे अंदर कह रहे सन गुरु नानक देव पातशाह के देके चौंका कड़ी कार, उपर आए बैठे कुड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, एह अन्न असाडा फिटे, तन फिटे फेड करेन, मन झूठे चुली प्रेन। अखीर दे उते कहिंदे ने कहो नानक सच त्याईए, सुच होवे तां सच पाई है। हुण एक बेनती मैं होर करां, जे कोई तुहाडे ते प्रश्न करे वी तुहाडा गुरु उत्ते ते गल करदे ने वी चौंका देना, गोबर दे नाल लेप करना, कार कढ़नी, लकड़ियां धो के बालनियां, ये पवित्रता इहदा खंडन कर रहे ने, ते अखीरली पंक्ति विच जाके कह रहे ने सुच होवे तां सच पाई है, तो फिर गल विरोधी लगेगी ना, वी अखीरली पंक्ति विच कह रहे ने सुच होएगी ते तां सच मिलेगा। पर प्यारियो इहदा थोड़ा जिहा विश्राम दा ही भरम है, विश्राम देना तुहानू आ गया ते अर्थ अपने आप साफ हो जाएगा। हजूर कहिंदे ने कहो नानक सच त्याईए, सुच होवे तां, सुच हुंदी तां है सच पाई है, सुच बनदी तां है जे सच मिल जाए, सुच होवे तां, तां सुच बनदी है अंदर दी सच पाई है, जे सच दे गुणा नू अपने हृदय विच वसा लवे। ते असी की पढ़ के निकल जाने, सुच होवे तां सच पाई है। असी एक विश्राम दे कारण अर्थां दे अंदर जमीन शमान दा फर्क खड़ा कर देने, सुच होवे तां सच पाई है। एक जगह ते मैनू गुरबाणी दा बोल होर भी चेते आउंदा है, पातशाह कहिंदे ने अंतर मैल गल मैं मन दी मैल ते तन दी मैल दी तुहाडे सामने रख रहा, क्योंकि फरीद साहब जी दा हुक्म अज इस तरह दा आया है। कहन लगे फरीदा मैं भुलावा पग दा मत मैली हो जाए, मैं ते पग दे भरम विच रहा कि मैली ना होवे, मत मैली हो जाए, गहला रूह ना जाने कि सिर भी मिट्टी खाए, वे सिर भी मिट्टी ने खा जाना है, मैं ते सिर ते बत्ती पग दा ही बड़ा ध्यान रखे, मन मैला हो जाता है, इहदा ध्यान किसे नूं है, तन मैला ना होवे इहदा ध्यान सानू सारिआं नूं है। भगत कबीर साहब जी कहिंदे ने अंतर मैल जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना, गुरबाणी दे बचन ने और कबीर साहब दी रचना दे बचन ने। हुण इन्हां बचनां नूं सुनन तो बाद जे बंदे दे मन दा भरम ना जाए ते फिर ते खिमा चाहवांगा, महा अग्ञानता दे हनेरे विच ही खड़ा है, फिर ते इहनों ना गुरु दी आवाज सुनदी है ते ना किसे दूसरे दी। कह रहे ने अंतर मैल, अंदर तेरे हुए मैल, अंतर मैल जे तीर्थ नावै ते नौंदा फिरे अठाठ तीर्थां दे उते, अंतर मैल जे तीर्थ नावै तिस बैकुंठ ना जाना। कहन लगे इस तरह कम करन दे नाल मनुख नू बैकुंठ ताम नहीं मिलदा, परमात्मा दे चरण नहीं मिलदे। तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कशु ना होवे ना ही राम एयाना, लोक पतीने, पतीने मैंने पतीज जाना, पतीज मैंने विश्वास करना, लोक तेनू चंगा कहन, इस गल दे नाल कबीर साहब कहिंदे ने फर्क नहीं पैना, लोक पतीने तू लोकां दे सामने विखावे दी सोच रखें। कहन लगे इहदे नाल फर्क नहीं पैना,

0: ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੋਗੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਬਾਹਰੀ ਸੁੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸੁੱਚ ਬਣਦੀ ਏ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੌਲ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਰੌਲ ਲਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੇ ਕਹੋ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਕਹੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹੋ ਹਰ ਰੌਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ। ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਤੋ ਖੈਰ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੈਲ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲੋਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧਤਰ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਬੁਰੀ ਹੈ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲੋਂ। ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਅਤਿ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲਖ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਤਨ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਅਗਲਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੋ ਕੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਦੇ ਹੋ? ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ, ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ, ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ ਕਰ, ਤਨ ਸਾਫ ਕਰ, ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਉੱਜਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਨ ਮੈਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਮਨ ਮੈਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਬਿਠਾਉਣਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੜਵੱਕੜੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਮੈਲਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ, ਅਮੋਲਕ ਚੀਜ਼ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਬਾਲਪਣ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਭਰ ਲਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਬਰੇਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਭਰ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੈਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਹੁਣ ਮਾਂ ਲਿਬੜੇ ਤਿਬੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਨਿੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਏ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਏ, ਤਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਦੂਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਅਗਰ ਮਨ ਵੀ ਲਿਬੜਿਆ ਤਿਬੜਿਆ ਹੈ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਕੁਚੈਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਕਿਵੇਂ ਪਾਓਗੇ? ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਾਗ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਕਾਹਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਮੈਲਿਆਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ। ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਕਾਹਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਮੈਲੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਾਗ ਦੋਸ਼ ਮੂੰਹ ਚੱਲਿਆ ਲਾਏ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਅਪਰਾਧ ਨੇ, ਪਾਪ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਖ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਕਲੰਕਿਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰਗਹ ਬੈਸਨ ਨਾਹੀ ਜਾਏ, ਜਾਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਦਰਗਹ ਬੈਸਨ, ਬੈਸਨ ਮੈਨੇ ਬਹਿਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਆ, ਅਧੂਰਾਪਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਤਨਾ ਸਮਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। कि जितना समा अपने आप नू पवित्र नहीं कर ले उन्ना समा परमात्मा दे चरणा विच बैण दा समा नहीं मिलेगा। एक बेनती मैं इस संबंध अंदर होर भी करदा चलां, साडे तन दे उत्ते जिहड़े पाए हुए कपड़े ने वह कपड़े मैले हो जाण, शरीर विचों निकलन वाली मैल या बाहरी गर्दो गुबार दे कारण तन दे कपड़े मैले होए, वह कपड़े असीं ला के पत्नी दे अगे सुट देने आ, धो के साफ करके मैनू दे। अगर पत्नी नहीं है मां दे अगे भैण दे अगे धी दे अगे या किसी दूसरे दे अगे कपड़े रख देने, कपड़े मेरे ने धोण दा काम तू कर। बाहरी दुनिया दे अंदर ये दस्तूर चलदा है, कपड़े किसे दे ने उन्हां नू साफ कोई दूसरा कर रहा है, धो कोई दूसरा रहा है। धर्म की दुनिया के अंदर मन के कपड़े नू धोण वास्ते ये दस्तूर भी नहीं है, ये मन का कपड़ा मैला किया है, तुसी आप इनू धोना भी पैना है तुहानू अपने आप में। ये मन का कपड़ा इस तरह का नहीं है कि इनू लाओ तो ला के किसी लौंडरी ते ले जाओ कि उत्थों मन धोवा के वापस ले आइए, कोई लौंडरी इस तरह की नहीं है। मन का कपड़ा इस तरह भी नहीं है कि इनू लाओ तो ला के मां भैन धी दे अगे रख दो कि कपड़े तू साफ कर। मन तुहाडा है, मैला तुसी कीता है, धोना भी तुहानू आप ही पएगा। हाँ एक गल जरूर है, तुसी अपने मन नू धोण वास्ते यतन करो थोड़ा ते धन गुरु ग्रंथ साहिब जी तुहाडे ते रहमत करनगे बहुत ज्यादा। पर जे हिम्मत करोगे मन नू साफ करन दी तां, ते जे हिम्मत ही ना करो ते फिर गुरु दी रहमत तों भी वांझे रह जावांगे। आप ही इनू धोना पैना है, आप ही असी इनू मैला कीता है। कुछ नुकते ने जो मैं तुहाडे चरणा विच बयान करन दा यतन कर रहा, इन्हां नू हिरदे दे अंदर वसाउण दा जरूर यतन करियो। जदों कोई अपने घर दा कूड़ा करकट इकट्ठा करके झाड़ू पोचा करके घर दे अंदरों कागज मिट्टी कट्टा इकट्ठा करके लफाफे विच पा के वो तुहाडे घर दे दरवाजे दे अगे रख जाण तो तुसी बर्दाश्त कर लोगे? दूसरे दे घर दा कूड़ा करकट पाया है उन्हें बैग दे अंदर, वो बैग सुट के चला गया एन तुहाडे दरवाजे दे अगे जिथों तुसी अंदर आना है या बाहर निकलना है, बिल्कुल मेन डोर दे सामने रख के, बर्दाश्त नहीं होएगा। गरीब तो गरीब भी बर्दाश्त नहीं करेगा। मन की सफाई करनी है तो इस तरह का ध्यान रखना पेगा। दूसरा कोई मेरे मन के घर के अंदर कूड़ा करकट सुटन का यतन तो नहीं कर रहा, कोई दूसरा मेरे कन्ना के अंदर चुगली सुटन का यतन कर रहा है, तो परहेज करो भी कूड़ा तेरा है तू मेरे मन में सुटन का यतन क्यों कर रहा है। अगर कोई तुहाडे कन्ना विच निंदा दे बोल काम दे बोल बुराई दे परे बोल पा रहा है ते गुरेज करो परहेज करो, उन्हों कहो भई अपना कूड़ा करकट अपनी बुराई अपने पास रख, तू अपने घर का कूड़ा मेरिया कन्ना दे राही मेरे मन दे घर विच सुटन दा यतन क्यों कर रहा है। कूड़ा दूजे दा हुंदा है, सानू मन दी समझ नहीं, असी दूसरे का कूड़ा चोली फैला के प्रवान करी जाने हैं। जे कोई दूसरा चुगली करता है दूजे की असी हां विच हां मिलाने हैं, कोई निंदा करता है हां विच हां मिलाने हैं, ते बड़ा खुश होके दूजे की निंदा ते चुगली दे अंदर हिस्सा लेने हैं, बड़ा खुश होके निम्मा निम्मा हसदे हुए भी नजर पैने हैं दूसरे की चुगली सुन के दूसरे की निंदा सुन के। पर ये नहीं जानते कि जो सुन रहे हो जो सुना रहे हो इन्हें ही तुहाडे जीवन की रुकावट बन जाना है, इन्हें जीवन के अंदर दीवार का काम करना, इन्हें तुहानू पार लगन नहीं देना। प्यारे हो इन्हां नुक्तियां नू अपने जीवन के अंदर अपनाओ अगर जीवन नू रोशन करना चाहते हो। गुरबाणी का फरमान है, मन मैले सब किस मैला तन तोते मन हच्छा ना होए। कह लगे तेरा मन मैला है ते एवें समझ लै कि सारा कुछ ही मैला है, तन नू धोण दे नाल तेरा मन हच्छा नहीं होना। कबीर साहब बैठे सन खड्डी दे उते कपड़े बुन रहे सन, कपड़े बुनना कबीर साहब जी दी करेते, कबीर साहब जी दा कम है धंधा है, कपड़े बुन रहे ने खड्डी दे उते बैठ के। निकलिया एक बिलकुल सुच दे नाल जुड़िया होया बारी सुच दे नाल पखंड दे नाल जुड़िया होया कोलों ब्राह्मण। ब्राह्मण ने वेख्या कि कबीर साहब खड्डी बुन रहे ने और खड्डी दे नेड़े बह के उन्होंने लंगर छकना शुरू कर दिता। अचानक उसे समय किधरे चलते चलते माता लोई जी आ गए प्रशादा लेके घरों ते कबीर साहब उथे ही हाथ धो के खड्डी दे कोल ही बह के प्रशादा छकना शुरू कर देंदे। उस पखंडी ब्राह्मण ने तनज परे दो बोल गए कबीर साहब जी नूं मुखातब हो गए क्योंकि सारा बनारस तकरीबन तकरीबन पखंडी ब्राह्मणा दे नाल भरिया सी। अगर बनारस दे अंदर संती होंदे ते गुरबाणी दे अंदर ये बोल कदी ना आउंदे कि गली जिन्ना जप मालियां लोटे हाथ निबग कोई हर के संत ना आखिया बनारस के ठग। बनारस दे ठग मशहूर ने बनारस दे संत मशहूर नहीं है ठग मशहूर ने। निकले कोलों तनज परे बोलां दे अंदर गल कह दिती कह लगा जिस बंदे नूं भोजन छकन दा नहीं पता कि किथे बह के खाना है उहदा जीवन किन्ना को सुचा होएगा उहदा जीवन किन्ना को पवित्र होएगा। कबीर साहब जी आखर बोल पै कहन लगे माता झूठी पिता भी झूठा झूठे ही फल लागे आमे झूठे जाहे भी झूठे झूठे मरे अभागे। कह लगे मां झूठी पिता झूठा उन्हां दी औलाद उन्हां दे गर्भ विचों जन्म लैण वाली वह भी झूठी आ रहे ने झूठ दे नाल परे जा रहे ने झूठ दे नाल परे आउण जाण दा यह सिलसिला मुकिया ही नहीं। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ ठाओ मैंने जगह पंडित जी दस दे ते जाओ के सुची जगह केड़ी। कहो पंडित सूचा कवन ठाओ जहां बह सो भोजन खाओ जिथे बह के मैं भोजन खावा ये दसदा ते जा के ओ जगह केड़ी है। मन नूं पवित्र करन दे नाल निरंकार दी हजूरी दे अंदर प्रवेश की मिल जांदी है। तन नूं पवित्र रखो जरूर पर सारा जोर तन दे उत्ते ना दियो सारा जोर मन दे उत्ते दियो मन दी सफाई वल ध्यान दियो ताकि मन करके हजूर दी हजूरी दे अंदर प्रवान हो जाइए। पंडित निहाल सिंह जी बहुत आला कविता नूं जन्म देंदे ने उन्होंने मैल दे संबंध विच एक बोल लिखिया है। वो कहिंदे ने एक मनुख व्याया गया उहदे घरवाली दा नां सी चंद्रमुखी। पुराने समय दे अंदर शरीर दे लक्षणां नूं वेख के सुहापन नूं वेख के नक्शो निगार नूं वेख के नाम दे दिया करदे सन चंद्रमुखी नाम सी चंद्रमुखी। ते पति चंद्रमुखी दी शोभा करदा थकदा नहीं सी चंद्रमुखी दे चेहरे नूं वेख वेख के आनंद पाउंदा सी ते इह गल कहिंदा सी चंद्रमुखी मैनूं लगदा तेरे वर्गा सुंदर मनुख दुनिया दे अंदर दूसरा नहीं है। पंडित निहाल सिंह जी लिखदे ने कि एक दिन चंद्रमुखी दे नक विचों मैल निकले उन्हें हाथ दे नाल नक दी मैल नूं साफ कीता पर थोड़ी जी मैल उहदे चेहरे दे उत्ते उहदी गल दे उत्ते लग गई थोड़ी जी मैल। उहदे पति ने गलानी कीती नफरत कीती उस मैल नूं वेख के ते मैरज करदा रहिंदा अक्सर ही कि नफरत हुंदी मैल तों है जे दूजे दी मैल दिस रही है दूजे तों नफरत है जे अपनी मैल नजर आ जाए ते अपने तों वी नफरत है दूजे तो नफरत कर दे हो जे कोई तुहानू पुछे भी क्यों आपां अक्सर कह दिंदे आ बड़ा बुरा मनुख है भी की बुरा है उहदे हथ पैर बुरे ने चेहन चक्कर बुरे ने की बुरा है आपां कह दिंदे आ नहीं उहदा सुभाअ चंगा नहीं है सुभाअ बड़ा बुरा है इहदी सोच बुरी इहदा वेखना बुरा इहदा चलना बुरा इहदा खाना बुरा इहदा मानसिक मंडल बुरा दूसरे दी बुराई तो नफरत है ते जे उही बुराई अपने विच दिस पै तो की अपने नाल प्यार करोगे। पर शर्त यह है कि जे दिस जाए पर दिसदी दूसरे दी बुराई है अपनी बुराई बंदे नूं दिसदी नहीं है अपने वेखदा है जदों भी गुण वेखदा है दूसरे दी जदों भी वेखदा है बुराई वेखदा है औगण वेखदा है। तो पति कहन लगा चंद्रमुखी पहला चेहरे दी मैल साफ कर तेरा चेहरा वेखण दे योग नहीं है। पति देव रोज कहिंदे सी मेरे नालों सुंदर कोई दूजा नहीं अज की होया। पति कहन लगा चेहरे नूं जाके साफ कर तेरे चेहरे दे उत्ते नक विचों निकली हुई मैल जम गई है। तो तो निहाल सिंह जी लिखते ने हे मल मूद कसूत सबैपुन और सलेखन बांजन भारी नाक की मैल जबे निकसे करना है संभार सो पोच उतारी कर दे नाल मैल कर मैंने हाथ कर दे नाल मैल साफ कीते पर किधरे चेहरे दे उते लगी रह गई है आख्या करना है संभार सो पोच उतारी तो मुख चंद्र कहे जेह को तब नाहे निहार सके वो नारी ते अखीर दे उते पंडित जी ने अपने वालों संदेश दिता कहन लगे पिख रंचक पिख मैंने वेख के रंचक मैंने थोड़ी जी पिख रंचक मैल गिलान करे सठ सठ मैंने मूर्ख सठ जानत नाही अहे के सारी हे मूर्ख मनुख जानदा नहीं है कि तेरे अंदर इस तरह की मैल ही मैल भरी पई है तेरे नौ द्वारियां विचों मैल ही बाहर आ रही है जितने नौ द्वारियां दे नाल ध्यान जोड़ के वेखो अंदर दी मैल बाहर आ रही है पर वो शरीर कमैल है मन दी मैल निरंकार नू परवान नहीं ते तन दी मैल सानू परवान नहीं असीं चाहुंदे आ तन साफ होवे निरंकार चाहुंदे ने मन साफ होवे तो अज दे इस महावाक दे अंदर भगत फरीद साहब जी दा प्रमाण कह लगे फरीदा मैं भुलावा पगदा मैं इस भरम विच रहा कि पग मैली ना होवे मन मैला होवे कोई डर नहीं पग मैली ना होवे मत मैली होए जाए बड़ा ध्यान रखे तन दे पाए हुए कपड़े मैले ना होन पगड़ी मैली ना होवे गैला रू न जाने के सिर भी मिट्टी खाए नहीं जानदा कि जिस मैल तो मिट्टी तो परहेज कर रहा है एक दिन मिट्टी तेरे उत्ते आ जानी मिट्टी पई है तोलवी कोई ना हो सीमित मिट्टी तेरे उत्ते आ जाएगी सिर नो भी निकल जाएगी खा जाएगी तो मैल तन दी ओ भी बुरी मैल मन दी ओ भी बुरी तन भी साफ चाहिदा है पर तन मैला भी होवे कम चल जांदा है पर मन मैला होवे ते कम नहीं चलदा तन साफ किवें रखना है पूरी कायनात नू समझ आ गई है मन साफ किवें रखना है ए समझ केवल विरलियां विरलियां नू हजारां विचों विरलियां नू मिले कोई विरला धर्म दे मार्ग दे उत्ते चलन वाला मन दा परहेजगार है तन दे परहेजगार सारे ही हैं रस्ते दे अंदर मिट्टी कट्टा होवे चिक्कड़ होवे पानी होवे असीं सिद्धा तुर के नहीं निकलदे रस्ता वला के निकल जाने हैं क्यों सामने ते चिक्कड़ है सामने चिक्कड़ होवे चुगली होवे निंदा होवे ईर्षा होवे तवैच होवे असी मन नूं उहदे विचों गुजारदे हां नहीं परहेज करदे कि इत्थों निकलन करके मन भी मैला होएगा कबीर साहब ताई ते चेतावनी देंदे ने कि साकत संग ना कीजिए दूरों जाइए पाप मन नूं लैके इधर जाएगा साकत दे संग दे अंदर ते मन तेरा अवच्छ मैला होएगा भगत फरीद साहब जी दे इस बचन नूं आधार बना के कुछ कहन दा निमाणा यतन कीता गया
1: फरीदा शक्कर खंड निवात गुड़

एक वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पवित्र गोद दा आनंद पा रहे सब माई भाई सत्संगी जनों, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक गोद दा आनंद पा रहे हो। सरवण कर रहे सी गुरु के कीर्तनिया पासों रब्बी बाणी दा कीर्तन श्री आसा जी दी वार दा। मन बिरतियां एकागर करिए ते जुड़िए चल रही लड़ी वार कथा जो भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों चल रही है। भगत जी दा फरमान नाती तोती संभ ही सुती आए नचेंदा, जीव इस्त्री ना तोके। संभ ही दा मतलब हुंदा है सज संवार के अपना शिंगार करके, ना के कपड़े बदल के इशनान पान करके शिंगार हार करके सब कुछ करके ते निश्चिंत होके सौ गई। पति दे नेड़े नहीं गई, पति नू मिली नहीं है, पति नू याद नहीं फरमाया, पति दे मंदर विच प्रवेश नहीं कीती। हार शिंगार इशनान पान करन तो बाद फरीद जी कहन लगे निश्चिंत नचिंद। नचिंद दा मतलब निश्चिंत, चिंता तो रहत, निश्चिंत होके सौ गई। फरीदा रही सो बेड़ी हिंगदी, हिंगदी बदबू बड़ी है ते दूसरे पासे गुलाब दे फुलां दी सुगंध भी बड़ी है, चंदन दी महक भी बड़ी है। जिमें चंदन दी महक अपने विच नवेकली थां रखदी है, हिंगदी दुर्गंध भी इस तरह अपनी जगह दे उते नवेकली थां रखदी है। अखिया तेरे मन दे अंदर हिंग वर्गी बदबू रही, रही कथूरी कंध ते कस्तूरी वर्गी महक तेरे जीवन दे अंदर पैदा ना होए। इस श्लोक नू खोलन दा यतन करदा चला। बंदा धार्मिक शिंगार ते कर लैंदा है पर धार्मिक बनदा नहीं है। तन करके धर्मी बन जाना बड़ा आसान है, मन करके धर्मी बन जाना परम कठिन है। जिन्ना वेशभूषा पहरावे तन करके धर्मी दिसना आसान है, उन्ना ही मन करके धर्म दे अंदर प्रवेश कर जाना ए महान है। बड़ी दुनिया धर्म दे अंदर प्रवेश कर जांदी है तन करके, मन करके प्रवेश नहीं करदे। किसी दे हाथ दे अंदर गीता फड़ी होवे, गीता दा पाठ करदा होवे, तीन तारियां वाला तिलक ओदे मत्थे उत्ते होवे, तेरे धागे दा जनेऊ ओदे गले विच होवे, धोती उहने बद्धी होवे, इस तरह दा अडंबर वेख के आप कह दोगे कि इह हिंदू धर्म दे अंदर खास मनुख है। गीता हाथ विच फड़ी रह जांदी है, जे कोई गीता दा सलूक मन विच नहीं गया ते फिर उह सही हिंदू अजे नहीं बनिया। ठीक दूसरे पासे भावें कुरान दी तलावत करदा होवे, हाथ विच तस्बी रख

पशु इस जुम्मेवारी दे बंधन तो मुक्त ने, आजाद ने, पर असी इस जुम्मेवारी तो मुक्त होना चाहिए, नहीं हो पावांगे, क्योंकि साढ़े मोढ़िया दे उत्ते खुदा वल्लों ये भार पाया गया। ये जुम्मेवारी तेरी है, तू सरदार जोन विचों है, सरदार जोन दे अंदर होने करके तेरे फर्ज ने, तू अपने फर्जा तो किनारा काशी ना कर, अपने फर्जा नू संभाल, फर्जा नू याद कर, फर्जा नू पूरिया कर। तेरे कुछ फर्ज तेरे अपने लिए ने, तेरे कुछ फर्ज तेरे परिवार लिए ने, कुछ फर्ज समाज लिए ने, कुछ फर्ज संसार लिए ने, ते कुछ फर्ज तेरे अपने लिए ने। तू परिवार दे प्रति ते अपने सारे फर्ज पूरे कर रहे हैं, तू अपने प्रति की कर रहे हैं, फर्ज पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहा? परिवार दे प्रति तेरा फर्ज है, तेरा परिवार है, तू उन्हां बच्चियां नू जन्म दिता है, उन्हां दी लालना पालना करनी तेरी जिम्मेवारी है, तू उन्हां ते एहसान नहीं कर रहा। कमा के उन्हां नू भोजन देना, बना के खवाउणा, ये मां बाप की जिम्मेवारी है, एहसान नहीं है। तू ए ते फर्ज कर रहा है बिल्कुल मुकम्मल तौर दे उत्ते पूरा, पर दूसरे पासे अपने संबंध विच तेरा फर्ज है, तू अपने मन नू सुरताल तरतीब विच करना है। इस फर्ज तो दौड़दा होया नजर पै रहा, किनारा काशी करदा होया नजर पै रहा, अपने लिए की कर रहा है? मैं बहुत खुलिया लफजा दे अंदर बेनती करा, मैं कथा कर रहा, तुसी मैनू पैसे दे रहे हो, मैं अपने वास्ते निजी तौर ते मेरा नेम की है, मेरा नितनेम की है, मेरा परमात्मा दे नाल जुड़न दा समा की है, मैं किन्ना समा जुड़दा, मैं अपने वास्ते की कर रहा, तुसी अपने लिए की कर रहे हो? ये भी ते फर्ज पछानना तुहाडा है, तुहाडी जिम्मेवारी है, तुहाडा फर्ज है, पछानो। प्यारियो, भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने, जोबन जांदे ना डरा, जोबन जा रहा है पर फर्ज पछानन तो बगैर जा रहा है, जोबन जा रहा है हनेरे दे अंदर टकरा मारदा होया जा रहा है, जोबन जा रहा है इस तरह जा रहा है कि जिवें अन्ना होया हाथी चलदा है, मस्त चाल दे अंदर इस तरह चल रहा है। जोबन जा रहा है पर कित्थे जा रहा है? गुरुद्वारिया मंदिरां मस्जिदां विच जोबन जा रहा है? जोबन जांदा होया वेखना होए ते पब्बां क्लबां विच जाके वेखो, जोबन सारा उत्थे टुकिया होया नजर पएगा, जोबन उत्थे बैठा होया नजर पएगा। जोबन जा रहा है पर जा कित्थे रहा है? अयाशी दे अंदर जा रहा है, बदमाशी दे अंदर। अज दी सदी जिन्हों पढ़ी लिखी ते ज्ञान याफ्ता सदी कहने, मैं ते हैरान हुंदा कि मनुख ने जवानी नू जिवें राखवीं रखे है, जवानी नू जिवें रिजर्व कर लिया है गुनाह करने वास्ते, कि जवानी दे अंदर दुनिया भर दे गुनाह करने ने, जवानी दे अंदर पाप कमाउणे ने, जवानी दे अंदर दुराचारी करनी है, जवानी दे अंदर हर धोखा धड़ी करनी है, ते बुढ़ापे नू रिजर्व रख लिया है परमात्मा दे नाल जुड़न वास्ते। ये जरूरी नहीं है कि हर शरीर दे उत्ते बुढ़ापा आएगा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं किसी की जवानी पूरी निभ पाएगी या नहीं निभ पाएगी, जरूरी नहीं है। तो खैर, जोबन जाते रहा है, जा किधर रहा है? हनेरे दे अंदर जा रहा है, पटकदा होया जोबन नजर आ रहा है, जोबन कोई सफला हुंदा नजर नहीं आ रहा। खिमा चाहवांगा बोल कुछ कौड़े ने और मन नू चोट ना करन। भगत जी कहन लगे, जोबन जांदे ना डरा जे शह प्रीत ना जाए, मेरा जोबन चला जाए मैनू डर नहीं है, झिझक नहीं है, मैं जोबन नू छड्डन लई तैयार हां, कुर्बान करन लई तैयार हां। पर पुछिया, भगत जी जोबन दे इवज चाहिदा की है, जोबन दे बदले चाहिदा की है? आखिया, शह दी प्रीत, परमात्मा दी प्रीत चाहिदी है, रब दा प्रेम चाहिदा। अगर जोबन दे के खुदाई प्रेम मिल गया है ते समझ लो सौदा बड़ा सस्ता मिल गया, बड़ा सस्ता मिल गया। पता नहीं किन्नी वारे जोबन मिलिया है ते किन्नी वारे सुक गया है बुराइयां दे अंदर, कुमला गया है बुराइयां दे अंदर, ते जेड़ा बूटा सुक जांदा है, कुमला जांदा है, उन्हों ना पत्ते ही लगदे ने, ना फुल ही लगदे ने, ते ना फल ही लगदे ने। अगर तुहाडे जोबन नू सत संतोख दा फल नहीं लगा, भाव भावनी दे फुल नहीं लगे, शरदा प्यार दीआं टहिणीआं शाखावां ने इस जोबन दे उत्ते जन्म नहीं लिया, तो फिर जोबन सुक्का समझो, जोबन नू हरिया मत समझो। जोबन दे अंदर की है? निरा सुक्का, निरा कमलाउणा। पर सुक्का कमलाउणा नजर कित्थों आ रहा है?
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਲੋਪ ਹੈ, ਕੁਮਲਾਇਆ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਕਿਆ ਝੋਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਕੂਨ ਜੋਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਾ ਅਗਿਆਨ, ਨਿਰੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ। ਜੋਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਜੋਬਨ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਜੋਬਨ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਅੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਜੋਬਨ ਨੁਕਸਾਨ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਜੋਬਨ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਹੋਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਨ ਕੇ ਚਲਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਕਦੇ ਰੋਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੇਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਜੋਬਨ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਇਹਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਮਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇਸ ਜੋਬਨ ਕੋਲੋਂ ਸੰਵਰ ਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਜੋਬਨ ਚਲਾ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੁਖਸਰ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਚੱਲਾਂ। ਜਿਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਨੀਵੀਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੌਲੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੂਸਰੇ ਸਰੀਰ ਕੋਲੋਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕੋਲੋਂ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਥੋੜਾ ਉਚੇਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਕੌਮ ਰੂਪ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਲ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਲ ਖਾ ਜਾਣ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰਾਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਾੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ। ਵਿਚਾਰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਤੋ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਟਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੋ ਮਿੱਤਰਤਾ ਖਤਮ ਹੈ, ਦਰਾੜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਚੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਕਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਨਖਿੱਤ ਪੱਧਰ ਦਾ, ਹੌਲੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਕਸ਼ੋ ਨਿਗਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਨਕਸ਼ੋ ਨਿਗਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਮੇਲ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਦ ਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਕਸ਼ੋ ਨਿਗਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ
ਕਿਸ ਜਾਤ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਥੋੜਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਲਿਆ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਕੇ। ਤੋ ਖੈਰ ਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਸਲ ਜਾਤ ਭੇਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋਬਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜੋਬਨ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਜੋਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਇਸ ਜੋਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਉੱਚਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਬੜੇ ਜੋਬਨ ਮੇਰੇ ਗਏ ਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਬੜੇ ਜੋਬਨ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੋਬਨ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ ਕਿੰਨੀ ਜੋਬਨ, ਕਿੰਨੇ ਜੋਬਨ, ਕਿੰਨੇ ਜੋਬਨ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਟਕਦਿਆਂ ਭਟਕਦਿਆਂ, ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਿਆਂ ਮਾਰਦਿਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਜੋਬਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਈਰਸ਼ਾ ਦਵੈਸ਼ ਦੇ ਝਗੜੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੋਬਨ ਖਿਸਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣਾ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲੋ। ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲੋ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਚਾਰ ਪੈਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬੀਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸਕੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਨ ਰੋਂਦਿਆਂ ਧੋਂਦਿਆਂ ਬੀਤੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹਾਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਨ ਲਾਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਤੇਗਾ, ਦਿਨ ਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣਾ। ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆ ਸੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਸਮਾਂ ਜੋਬਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋਬਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਰਜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ ਜੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ, ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕੁਮਲਾਏ। ਬੜੇ ਵਾਰੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਤੇ ਕਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਵਸਾਏ ਤਬ ਹਮ ਰਾਮ ਗਰਭ ਹੋਏ ਆਏ। ਬੜੇ ਵਾਰੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਜੋਬਨ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜੋਬਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਐਲਾਨੀਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਮਿਲੇ ਗਏ, ਕਦੀ ਚਲੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਦੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੋਬਨ ਬੜੇ ਮਿਲੇ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ ਚਿਰ ਪਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਇਸ ਜੋਬਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਜੋਬਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪਾ ਰਹੇ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਸਲੋਕ, ਦੋ ਸਲੋਕ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿਰਹਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੋਹ। ਔਰ ਮੋਹ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੋਹ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।
अपने बच्चे चंगे लगते ने, दूसरे दे बच्चे चंगे नहीं लगते। तो मोह खतरनाक तां है क्योंकि मोह दे अंदर अपना अपना लगता है ते दूजे अपने नहीं लगते। तो जद दूजे अपने लगते नहीं तो फिर किसी दूजे नूं उजाड़न लग्यां डर भी किस चीज का है। जद कोई दूसरा अपना लगता ही नहीं तो अपना नहीं तो फिर दूसरे दे नाल हमदर्दी भी कादी है। मोह दे अंदर बंदा दूसरे नूं उजाड़ सकता है अपने आप नूं वसाउण लई। मोह दे अंदर बंदा दूसरे दे कारोबार नूं बंद कर सकता है अपना कारोबार चलदा रखण लई। मोह दे अंदर बंदा दूसरे बच्चे दे मुंह विचों भोजन खो सकता है अपने बच्चे दे पेट पूर्ति वास्ते। मोह दे अंदर दूसरे नूं दुख दे सकता है अपनियां खुशियां ले। दूसरे नूं रुवा के अपनियां खुशियां लभण दा यतन करदा है ओ बंदा जिस बंदे दे मन दे अंदर मोह है ते मोह दी तारा बड़ी प्रबल ते डूंगी हो के चल रही है ये बंदा मोह तों कुर्बानी दे जांदा है। तमाम गुणा दी मोह दे उत्तों कुर्बानी कर देंदा है। हुण थोड़ा समझ दा दायरा वधना शुरू हो जाए इसनों सारे ही अपने लगने शुरू हो जान गुरबाणी दी कथा कीर्तन सुनदिया सुनदिया गुरबाणी दा कोई वाक मन नूं चोट कर जाए इनू सारिया विच परमात्मा नजर आना शुरू हो महसूस करे जिस तरह दे मेरे बच्चे ने उस तरह दे दूसरिया दे बच्चे ने। जिस तरह दा दुख मेरा है इस तरह दा ही दुख दूसरे दा है। जिस तरह दा गरीबी दे अंदर मैं दुख नूं हंडारिया गरीबी सारिया वास्ते इको जी दुखदाई है दूसरे लिए घट नहीं है। जिन्ना कलेश मेरे अंदर इन्ना ही कलेश दूसरे दे अंदर है। प्रेम दे अंदर आया होया बंदा किसे नूं दुख देन तो पहला उस जगह दे उते अपने आप नूं खड़ा करके वेख लैंदा है। अगर इस जगह दे उते मैं खड़ा हुंदा ये बंदा मैनू दुखी करन दा यतन करदा तां मेरे मन दे उते की बीतदी तां मेरे मन दी दशा की हुंदी। प्रेम दे अंदर आया होया बंदा इन्हां गल्लां दी विचार करनी शुरू कर देंदा है। तो जद ये गल्लां विचार दे अधीन आ जान तो फिर पाप हुंदा ही नहीं है अपराध हुंदा ही नहीं है। पाप अपराध कदों हुंदा है मन ने बुराई नूं चितविया है ते तन उसे वक्त ओह काम करन वास्ते उठ के तुर पिया है। मन ने कह दिता है विचारी करनी चाहीदी है तन उसे वक्त नालों नाल इस राह दे उत्ते चल पिया है अपराध होया ते पाप होया। मन ने कह दिता है चोरी होनी चाहीदी है तन नालों नाल उठ के किसी की जेब कतरन लई किसी का घर उजाड़न लई चोरी करन लई चल पिया अपराध होया पाप होया। अगर मन कहे चोरी करनी चाहीदी है ते तुसी इस विचार नूं विचार अधीन कर लो परखना शुरू कर दो रिड़कना शुरू कर दो भी ये कम चंगा है जां बुरा है तो आप चंद समय बाद पाओगे तुहाडे मन दा भी मनोबल डिग गया है। मन दे अंदरों हुण आवाज आ रही है पर बड़ी मदम फिर विचारी जाओ इस विचार नूं रिड़की जाओ कुछ समा बीत जाण तों बाद पाओगे विचार मन विचों निकल ही गया है चोरी करन दा इरादा ही बदल गया है। मैला विचार बनदिया सार मैला कर्म करन वाले बड़े वड्डे पापी दुराचारी अपराधी जगत दे अंदर मिलदे ने। मैला विचार बन जाए उन्हूं समा देना उस विचार नूं डिले करना इस तरह दे मनुखां कोलों ना पाप हुंदा है ना अपराध हुंदा है। तीसरी क्वालिटी दे ओह मनुख ने जिहड़े बहुत उत्तम ने जिन्हां दे मन दे अंदर मैला विचार बनदा ही नहीं है। खैर किसी वक्त मैं फिर अर्ज करांगा अर्ज मैं कर रहा सां प्रेम दे अंदर अपने बच्चियां वर्गे दूसरे दे बच्चे भी नजर आ जांदे ने ते जद दूसरे दे बच्चे भी मेरे बच्चियां दे बराबर दिस रहे ने तो फिर दूसरे दे बच्चे नूं रुवा के अपने बच्चे नूं हसाउण दा यतन किवें कर सकांगे। दूसरे दे बच्चे दे मुंह विचों भोजन दा टुकड़ा खो के अपने बच्चे दे पेट दे अंदर किवें तोर सकांगे।
क्योंकि दूसरे दे ते अपने दे अंदर हुण कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। फिर इस तरह की अवस्था दे अंदर पहुंचा होया मनुख दूसरे की गरीबी, दूसरे की दीन दशा, दूसरे की भुख नूं वेख के मिटाउण दा यतन करदा है, ना मिटा सके ते उहदे हिरदे की डूंघाई विचों इक अरदास हुंदी है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। फिर वह अरदास करदा है निरंकार सब दा भला कर। ठीक है मेरी लोड़ है भोजन, पर दूसरे की लोड़ भी ते भोजन है, इकली मेरी लोड़ ते नहीं है। मेरी लोड़ है कपड़ा, दूसरे की लोड़ भी ते कपड़ा है, इकली मेरी लोड़ ते नहीं है। जो मेरिया लोड़ा ने उस समाजिक प्राणी होने दे नाते सब दियां लोड़ा ने। मैं किसे दियां लोड़ा खो लवां, दाता खो लवां और अपनिया लोड़ा पूरिया करा, ये मैनू शोभा नहीं देंदा। फिर वो दूसरे नूं भी हसाउण दा यतन करदा है जितनी उसकी समर्था है, ते जद समर्था खत्म हो जाती है ते फिर वो अरदास करदा है परमात्मा सब दा भला कर। सब दा भला मंगण वाला सब दे घेरे दे अंदर आप भी आ जाता है। इस तरह नहीं है कि आप सब दे घेरे तो बाहर रहिंदा है, सब दे दायरे विचों आप भी आ जाता है। सब दे घेरे दे अंदर तमाम पशु परिंदे जीव जंतु मनुख मातर सब कुछ आ जाते हैं, दिसन वाले ना दिसन वाले सारे जंतु आ जाते हैं सब दे घेरे दे अंदर। तो एक दस्तूर है जो सब दा भला मंगदा है वो कर भावे ना सके, क्योंकि करना तो उन्ना ही है ना जिनी समर्था है, कर भावे ना सके पर जो मंगदा है परमात्मा उहदा भला अवश्य करदा है। ते जो दूसरे दा बुरा मंगदा है एक दस्तूर है परमात्मा दा बनाया होया उहदा अपना बुरा हुंदा है अवश्य हुंदा है। दूसरे दा बुरा मंगना एवें समझ लो अपने वास्ते बुराई मंगन दा तुसी राह खोल रहे हो, तुहाडा बुरा होवे ए यतन कर रहे हो। दूसरे दा भला मंगना समझ लो ए यतन कर रहे हो कि मेरा भला होवे। अगर ए नुक्ता समझ विच आ जाए ते आप कदी किसे दूसरे दा बुरा मंग ही नहीं पाओगे। मैं ना लफ्जां नूं दोबारा दोहरा दिया, दूसरे दा बुरा मंगोगे बुरा कर नहीं पाओगे, क्योंकि जो भी देना है परमात्मा ने देना है साडे हाथ विच ते है नहीं। असी किसे दे कोलों खोई तुरे जावांगे लई जावांगे, अगर परमात्मा ही उहदी जेब भरी जा रही है ते असी लै लै के थक जावांगे, देण वाला कदी थकदा नहीं है। तो अर्ज मैं कर रहा सा दूसरे दा बुरा करना जां बुरा मंगना इस तरह समझ लो कि तुसी अपना बुरा आप ही कर रहे हो, अपने हथां दे नाल ही अपने पैरां दे उत्ते कुहाड़ा मार रहे हो। दूसरे दा भला मंग के तुसी अपना ही भला मंग रहे हो, एक सूत्र है परमात्मा दा दस्तूर है। अगर ये नुक्ता समझ विच आ जाए तो धर्म दे राह दे अंदर इस नुक्ते दे जरिए तुहानू बहुत वड्डी सफलता प्राप्त हो सकती है। धर्म दे राह दे उत्ते चलदियां चलदियां रीढ़ दी हड्डी दा एक मणका है सब दा भला मंगना भला वेखना भला सोचना। असी भला मंगदे भी नहीं आ भला करदे भी नहीं आ भला सोचदे भी नहीं आ, तो फिर हुंदा की ये जीवन दे अंदर पूरा हुंदा है। जीवन दे अंदर कले कलेश दुख दलिद्र बन जांदे ने, तो फिर साडे कोल उहनू मिटाउण वास्ते राह की है। फिर भी ये नहीं कि जिस कारण करके बीमारी बनी है हुण मैं वो कम ना करा, कम ओही करना है। हुण अगला नुक्ता है बस $5 देने ने अरदास करवा लेनी है ताकि मेरा भला होवे, इस तरह भला हुंदा नहीं है। दूसरे कोलों पाठ करवा लेना है ताकि मेरा भला होवे, ते खुद करना नहीं, खुद करना नहीं, परहेजगार बनना नहीं, शुभ कर्म करना नहीं, तो फिर जीवन दे अंदर कले कलेश हो के चोरे इस सब कुछ वधदा तुरिया जांदा है। खैर मैं अपने विषय वल मुड़ा। नंबर एक दे उत्ते है मोह, फिर इस तो बाद अगे चल के आउंदा है प्रेम। ये प्रेम दा दूसरा रूप है कि सब दा भला मंगना। जिस हिरदे दे अंदर मोह है ते मोह दी तारा बड़ी डूंगी ते बड़ी तिखी चलदी है, ਉਹ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਲੱਖ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ,
और मेरे को इस तरह का एक प्रेमी मेनू मिलिया भी सी। एक मार्केट दे अंदर किधरे अग लग गई दिवाली दे दिना दे अंदर दुकाना 10-12 सड़ के राख हो तबाह हो गई। ओदी दुकान बच गई सबब दे नाल। गुरुद्वारे आंदा है प्रसाद लेके अरदास करवा रहे निरंकार तेरा मैं शुक्र गुजार हां मेरी दुकान बच गई। मैं क्या सड़िया किनिया ने कहन लगा 10-12 दुकाना सड़ के बिलकुल सवाह बन गई ने राख बन गई ने मेरी बच गई है। मेरी बच गई है मैं खुश हां। दूसरे दियां सड़ गई ने मैनू कोई अफसोस नहीं है। इस तरह का मनुख मोह दे अंदर जकड़िया है। इस तरह के मनुख की अरदास का की लाभ होगा की अर्थ होगा। जो दूसरे की दुकान सड़ गए ओदे उत्ते अफसोस जार भी नहीं कर रहा कि सड़ गई ने अपनी बची अपने बचन वास्ते हासे निकलते ने। इस तरह का मनुख अंदरों बड़ा करप्ट हुंदा है खोटा हुंदा है अंदर का शुद्ध नहीं हुंदा। दूसरे का नुकसान होया ओदे विच खुशी नूं प्रगट करना ये बड़े हौले मनुखां का काम है। दूसरे के रोने के अंदर किसी नूं रोण की जाच आ जाए दूसरे की खुशी के अंदर खुश होने की जाच आ जाए दूसरे के हंजू वेख के अक्षबार होने की इसनू वादी पै जाए। इस तरह का मनुख फिर रब दे नेड़े नेड़े अंदरों हुंदा तुरिया जांदा है। तो खैर प्रेम के अंदर बंदे नू दूसरे का दुख भी दुखी करके रख देता है। दुख दूसरे के घर विच आया है बंदा अपनी जगह के उत्ते परेशान होया दुख आया क्यों है ते फिर उन्हें पता भी नहीं होंदा ते उदी अरदास भी हो जाती है निरंकारे दा भला कर। बड़े सज्जन इस तरह के मिलते ने निरंकारे दा भला कर जिदे वास्ते अरदास कीती जा रही उन्हें पता भी नहीं कि मेरे संबंध में कोई पाठ पूजा कर रहा है या अरदास कर रहा है पता भी नहीं। प्रेमी हिरदा भले की सोच रखता है भला मंगता है किसी का दुख उहदे कोलों बर्दाश्त हुंदा नहीं है किसी का दर्द उहदे कोलों सहन हुंदा नहीं है। दूसरा रोंदा है नाल उहदे भी हंजू उतरने शुरू हो जांदे ने। दूसरा हसदा है ते उह परमात्मा का शुक्र गुजार हुंदा है निरंकार तू इहनू दातां दित्तियां ने जिन्हां नू नहीं मिलियां तू उहनां दी झोली भी बख्श सारियां नू दे। प्रेमी हिरदा सब का भला मंगता है। प्रेम जिवें जिवें मन दे अंदर टिकदा जांदा है प्रेम अंदर पकदा जांदा है प्रेम ही अगे जाके पकदा पकदा वैराग दा रूप धारण कर लैंदा है। अज जिहड़े दो श्लोक भगत फरीद साहब जी ने मैं तुहाडे सामने पढ़ के सुनाए दोवां दे अंदर वैराग दा जिक्र है। सब तो पहला मोह फिर उस तो बाद प्रेम। प्रेम अंदर पक जाए प्रेम अंदर टिक जाए प्रेम पकदा पकदा अगे जाके वैराग दा रूप धारण कर लैंदा है। ठीक इस तरह ही जिवें आप किसी गऊ जां मझ दा किसी भांडे दे अंदर दुध लेके आउंदे हो दुध उस दुध नूं जाग ला के खट्टा ला के जमा दिओ उहदा रंग ढंग ते उस तरह दा ही रहिंदा है पर उहदा नां बदल जांदा है ते थोड़ा जिहा उहदे अंदर फर्क पै जांदा है। उह जम्मन तों बाद बन जाएगा दही। रंग दा भावें चिट्टा ही रहा पर उहदा नां बदल गया। हुण पुछो भी भांडे दे अंदर की वस्ते कोई यह नहीं कहेगा दुध पिया है वेखण वाले सारे कहणगे दही बर्तन दे अंदर दही है कल दुध सी अज दुध नहीं है अज दही है। फिर सहजे सहजे उहनूं मथना शुरू कर दिता है। उहनूं मथदिआं मथदिआं अगों दो चीजां निकलियां ने एक दे अंदर कढ के मक्खण पा दिता है ते दूजे भांडे दे अंदर कढ के लस्सी पा दित्ती है। दुध तों पैदा होया सब कुछ पुछो भी इस भांडे विच की ते दूजे विच की जवाब आएगा एक दे अंदर मक्खण है दूसरे दे अंदर छाछ है दूसरे दे अंदर लस्सी है। उस मक्खण नूं तपा दिओ ते फिर बन जाएगा इहदे अंदर शुद्ध देसी घिओ है ते आखर दुध। ठीक इस तरह मोह तों अगे चलदा चलदा बन जांदा है प्रेम। प्रेम जद पकदा तुरिया जांदा है रसदा तुरिया जांदा है प्रेम ही अगे जाके नाम बदल लैंदा है प्रेम ही रूप बदल रहिंदा है उहदा नाम बन जांदा है वैराग। प्रेम दा ही बदलिया होया नाम ते बदलिया होया रूप वैराग है। एक अवस्था दा नाम उस अवस्था दे अंदर पहुंचन वाले नूं कह दिता गया वैरागी हिरदा। एक अवस्था विच रहन वाले नूं कह दिता गया प्रेमी हिरदा।
एक अवस्था विच रहन वाले नूं कह दिता गया ए बिल्कुल मोह दे चिकड़ दे अंदर लबरेज है। तो खैर वैराग वैराग दी अवस्था दीआं निशानियां ने कि इस तरह दे मनुखी मन विचों हर वक्त हंजू उठदे रहिंदे ने। प्रेम अंदर नको नक भरिया रहिंदा है, प्रेम समाया रहिंदा है, ते ओ प्रेम फिर वैराग दा रूप बन के हंजुआं दे राही एक गर्म जलदे राही अखां विचों बाहर टपकना शुरू हो जांदा है। इस तरह दे मनुख दे कोल किधरे मामूली जिही गुरु दी गल करो ओहदे नेत्र तुहानूं वगदे दिसणगे। इस तरह दे मनुख दे कोल किधरे जाके कोई गुरु की कथा कहानी आरंभ ही करो छेड़ो ही उस वक्त ओहदे गले दे अंदर गच आ जांदा है, गला रुक जांदा है और हंजू वगने शुरू हो जांदे ने। कमाल दी गल है, इन्ना वैरागी हिरदा कल तक लगातार गुरु दियां कथा कहानियां सुनदा सी पर कदी रंचक मात्र मन दे उते असर नहीं सी होया। अज थोड़ी जी सुनदा है उहदे नाल ही मन नूं चोट लगदी है, मन रोना शुरू कर देंदा। कहिंदे ने कि रुख दी टहनी जिन्नी कोमल हुंदी है थोड़ी जी हवा आवे ते हवा दे झोंके दे नाल रुख दियां टहनियां झूमना शुरू कर देंदियां ने। मामूली हवा दे नाल, ना मात्र हवा दे नाल पत्ते हिलने शुरू कर देंदे ने। रुख दा तना पकदा पकदा काफी मोटा हो जाए और वो तना ताकतवर बन जाए थोड़ी हवा दे नाल ते उस तने नू हिलाया नहीं जा सकदा, हिलेगा नहीं, वो तना झूमदा नहीं है। कोमल टहनियां हवा दे सामने झूमदियां ने पर ताकतवर तना एक रुख दा टाणा उते हवा दे सामने नहीं झूमदा। बहुत तेज तूफान तो बाद वो भी झूमदा है पर फिर अगे चलो जे पत्थर है ते पत्थर भावे तूफान चलदे रहन फिर वो बिल्कुल ही नहीं झूमदा। पत्थर हवा दे सामने नाच नहीं करदा, झूमदा नहीं है। जिस मनुख दे मन दे अंदर वैराग बहुत ज्यादा है, गुरु दे संबंध विच प्रेम बहुत ज्यादा है, मामूली जी आवाज गुरु दे संबंध विच कोई कन्ना तक आई है वो झूमना शुरू कर देंदा है, रोना शुरू कर देंदा है, वैराग अंदरों बाहर फुटना शुरू हो जांदा है मामूली जी गुरु दी गल सुनदे आए। इस तों अगे तुरे जाओ कुछ मनुख इस तरह दे ने उन्हां दे मन दे अंदर गुरु दे संबंध विच प्रेम ते हुंदा है पर वो प्रेम पक्या नहीं हुंदा। कदी कदार 6 महीने साल बाद उन्हां दे मन दी दशा बनदी है, कथा चलदी है, कथा नूं सुनदिआं कीर्तन नूं सुनदिआं किधरे मामूली जिहा मन वैरागमई बनदा है, नहीं ते नहीं बनदा पर प्रेम हुंदा है पर थोड़ा हुंदा है, कच्ची म्यार वाला हुंदा है, अजे पक्या नहीं। कुछ इस तरह दे पत्थर लोग भी हुंदे ने, खिमा चाहांगा भावे दिन पर रात 24 घंटे लगातार कथा चलदी रहे कीर्तन चलदा रहे पर उन्हां दे नेत्र कदी तर हुंदे ही नहीं है, कदी नेत्रां विचों वैराग आउंदा ही नहीं है, बड़े पत्थर बड़े कठोर। तो खैर अज दे ए महावाग भगत फरीद साहब जी दे कहिंदे ने फरीदा चिंत खटोला हे परमात्मा मैं चिंता नूं खटोला बना लिया। खटोला कहिंदे ने मंजी नूं, मैं चिंता नूं ते चिंता किस चीज दी है, ए नहीं कि मैनूं धन नहीं मिलिया तां चिंता है, परिवार नहीं मिलिया तां चिंता है, मेरी मौत सामने आण के खलो गई है तां चिंता है, शरीर रोगी बन गया है तां चिंता है, नहीं है। चिंता एक गल दी है परमात्मा तू मिलिया जे क्यों नहीं, मिलना चाहिदा सै पर मिलिया क्यों नहीं। ए जन्म सारा बीतदा जा रहा है, मेरा बालपन चला गया तेरा मिलाप नहीं होया, मेरी जवानी बीत गई ते नशियां विकारां दे अंदर मदहोशी दे अंदर रंचक मात्र भी तेरे मिलाप दा आनंद मैं नहीं पाया। जवानी तो बाद बुढ़ापे दा दौर आया है ते बुढ़ापा भी मेरा बीत रहा है, बुढ़ापा भी मेरा जान दे किनारे दे उते है, निरंकार मिलिया ते तू अजे भी नहीं, चिंता बन गई है कदों मिलेगा। बहुत जन्म बिसरे थे माधो इह जन्म तुम्हारे लेखे कह रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे। निरंकार आशा एक ही है, बाकी उम्मीदा बाकी इशावां पिछे रह गईयां ने, बाकी इशावां दा वेग कमजोर पै गया है, इक्को ही आशा इक्को ही तांग बाकी है,
ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਦਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਈ ਜਨਮ ਬੀਤ ਗਏ ਤੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸੱਲ ਸਹਿਣ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੰਡਾਉਂਦਿਆਂ ਹੰਡਾਉਂਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਮਿਲ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਬਾਦੋ, ਬੜੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ। ਤੋ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੁਮ ਸਰ ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨਾ ਤੁਮ ਸਰ ਅਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਿਆਲੂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਤਨੀ ਬੇਹਬਲਤਾ, ਕਿਤਨਾ ਵੈਰਾਗ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਬ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਅਜਮਾਉਣਾ ਕੀ ਏ, ਪਤਿਆਉਣਾ ਕੀ ਏ, ਮੇਰੀ ਪਰਖ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨੈ ਜਨਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੈ। ਜਦ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਾਨੀ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਐ ਪਾਈਐ। ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤਨ ਦੀ ਭੇਟਾ, ਮਨ ਦੀ ਭੇਟਾ, ਧਨ ਦੀ ਭੇਟਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਜਮਾਉਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ। ਤੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੀ ਮੁੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ ਵਾਣ ਦੁੱਖ। ਤੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਛੋੜਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਧੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਭਾਈ ਭਾਈ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਮਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਧਨ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ। ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਦੁੱਖ, ਇਕੱਲਾ ਦੁੱਖ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰਸ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਅਹਿਸਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਪ੍ਰਯਤਨ ਹੋਰ ਕਰ, ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਰ, ਮੰਗ ਕਰ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿ, ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਹਿ। ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕੈ ਰਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕੈ ਰਸ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਣ ਦੁੱਖ, ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੀ ਹਾਂ ਸੇਰੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਾਵੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਣ ਫਿਰ ਉਸ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਬੁਣਨਾ ਵੀ ਤੇ ਹੈ, ਵਾਣ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਣ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਣ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਚਿੰਤ ਖਟੋਲਾ ਵਾਣ ਦੁੱਖ, ਬਿਰਹ ਵਿਛਾਵਣ ਲੇਪ। ਹੁਣ ਮੰਜੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਜੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਪਾਵਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਮੰਜੀ ਦੀਆਂ ਹੀਆਂ ਸੇਰੂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਲਿਆ। ਮੰਜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ, ਵਾਣ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵਾਣ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਮੰਜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਮੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬਿਸਤਰ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਛਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਰਹਾ ਵਿਛਾਵਣ ਲੇਪ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰਾ ਵੈਰਾਗ ਤੇਰਾ ਬਿਰਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਲੇਪ ਰਜਾਈ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਲਾਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
विशावन लेप विषय में बिरहे नो ऊपर लिया मैं बिरहा। दिन पर रात मेरे जीवन दे अंदर बिरह ही बिरहा रहिंदा है। कहन लगे ए मेरा जीवन है, बिरह विशावन लेप एहो हमारा जीवना तो साहिब सच्चे वेग। हे मेरे साहिब, हे मेरे निरंकार, मेरे जीवन दी चाल इस तरह दी है जो मैं तेरे सामने बयान कर रहा। कदी रुक करके मेरे वल वेखता सही कि तेरे नाल प्यार करन वाला वैरागी हिरदा किस तरह जीवन गुजारदा है। वैराग में हिरदे वाले मनुख दे पास तन दौलत पदार्थ बहुत सारे होन पर उनो इन्हां दे नाल लगाव नहीं रहिंदा, अगे चला जांदा है। निरंकार तू मिले तां गल बनदी है, तेरे तो बगैर नहीं। इस तरह दे मनुख नूं कोई दूसरा मनुख जमीन जायदाद मिलखो मिकदारी देवे, कोई लालच देवे तेनू ए कुछ मिलेगा, छड परमात्मा दे राह नूं की लैना चल के, नहीं मिलदा ना सही। केड़ा सारी दुनिया ने रब नूं पा लिया पर वो रुकदा नहीं है। वैराग मन दे अंदर इको ही है, यतन प्रयतन इको ही है, अरदास मन दे अंदर इको ही है। हुण ओ साधना दे दौर विचों दी निकलन दा यतन कर रहा है ते उम्मीद अरदास की करदा है, निरंकार तू मिले ता मेरे मन दा चैन मेरे मन दी शांति, तू ना मिले ते फिर मेरा जीवना कादा जीवना होया। एक सच्ची सुहागण दी अरदास इस तरह दी, सच्चे जग्यासु दा जीवन इस तरह दा ही है। एहो हमारा जीवना, मेरा जीवना चिंता दे अंदर, मेरा जीवना दुख दे अंदर, मेरा जीवना अधूरा जिया, ते परमात्मा कदा जीवना है। तेरे तो विछड़ के जीवना भी कोई जीवना है, तू मेरी अरदास सुन ते मैनू मिल। इस तरह वो बेनतियां करदा होया नजर पैंदा है। शेखशाह जी साहब जी ने रब दे प्यारियां दियां नौ निशानियां बयान कीतियां ने, नौ निशानियां। वो कहिंदे ने रंग जरद सब तो पहली निशानी, रब दे प्यारे दा रब दे आशक दा चेहरे दा रंग बदल के जरद हो जांदा है। जरद दा मतलब पीला। पैना चौल बनाउंदियां ने प्रशादे लंगर दे अंदर चौल बांदे ने, उनां विच पा दिओ पीला रंग ते आपां पंजाबी विच कह दिंदे आं जरदा बनाया जरदा। जरदे दा मतलब पीले रंग वाले चौल। जरद फारसी दे अंदर पीले नूं कह दिंदे ने। रब दे नाल जुड़िया होया वैराग में हिरदा शेख शादी साहब कह देंदे ने रंग उदा जरद रहिंदा है। रंग जरद आहे शरद ठंडे हौके उदे विच्चों निकलदे रहिंदे ने। मन विच्चों ठंडे हौकियां दा जन्म हुंदा है ते ठंडे हौके क्यों? परमात्मा दे विछोड़े दे कारण। रब दे संबंध विच वैराग बड़ा है। जनून शाजे एक जनून जिहा बन जाए कि ऐ मंजिल पा के ही रहना है, ऐ कुछ मैं करके रहना है, तो जितना समा वो मंजिल आ पाना लो ना खाना चंगा लगता है, ना पीना चंगा लगता है, ना पहनना चंगा लगता है, ना सुनना चंगा लगता है, ना बहना चंगा लगता है। लोग नचते टपते हसते गाते ने पर जिदे सिर दे उते जनून छाया होंदा है वो कहिंदा है क्यों रौला रप्पा पाया है, क्यों शोर शराबा, उन्हूं कुछ चंगा नहीं लगता, ना अन्न ना पानी ना कपड़ा ना मंदिर ना पदार्थ कुछ भी नहीं। हुण मंजिल मिले तो शांति ताए, मंजिल तोरा टिकाणा किधरे भी मिले शांति नहीं है। वैराग में हिरदे रहिंदे ने इस तरह। रंग जरद आहे शरद नंबर तीन दे उत्ते चसम तर, चसम मैने अखां, तर मैने तर रहिंदियां ने वगदियां रहिंदियां ने। रब दे आशकां दियां रब दे प्यारियां दियां निशानियां अखां उन्हां दियां हर वक्त वगदियां नजर पैंदियां ने। परमात्मा दे मार्ग दे उत्ते चलदियां चलदियां रस्ते दे अंदर एक मुकाम आउंदा है, एक स्टेज मन दी बनदी है, मानसिक दशा इस तरह दी बनदी है, और इस दशा विचों दी गुजरदियां गुजरदियां ही अगे निकलना पैंदा है, गुजर के ही अगे परमात्मा मिलदा है। यह अवस्था लाजमी आउंदी है। यह हुण नालों नाल विचार तुसीं करी जाणी है, मेरा मन मोह दे अंदर है, मैं प्रेम दे अंदर हाँ या मैं वैराग दे अंदर हाँ, मैं किथे खड़ा? तुहानू अपने बारे जितना पता है इतना दूसरे नू नहीं पता। खुदा जानदे ने साडे संबंध विच, असी आप जानदे हाँ अपने संबंध विच, दूजा नहीं जानदा। तो आखिया चसम तर उहदे नेत्र वगदे नजर पैंदे ने। भगत कबीर साहब जी दे बचन आउंदे ने बाणी विच
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰ ਚੜ ਕੇ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੋ ਨੈਣ ਨੀਰ ਪਰ ਆਇਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਿਰਦਾ ਇੰਨਾ ਵੈਰਾਗਮਈ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਰਾਹ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਰਾਹ ਤੱਕਦਿਆਂ ਤੱਕਦਿਆਂ ਮੇਰਿਆਂ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਵਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਨੈਣ ਨੀਰ ਭਰੇ ਆਇਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਚੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਸੁਹਾਗਣ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵੈਰਾਗਮਈ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਕੇ, ਉੱਭੜਵਾ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਸੀ, ਉਹ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਲੱਭਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਇਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ, ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਉੱਭੀ ਪਈ, ਸੁਹਾਗਣ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਭੜਵਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਸੁਪਨੇ ਉੱਭੀ ਪਈ, ਗਹਿਓ ਕੇ ਨਾ ਅੰਚਲਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਪਤੀ ਦਾ ਅੰਚਲ ਪੱਲਾ ਫੜਨਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਫੜਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਗਹਿਓ ਕੇ ਨਾ ਅੰਚਲਾ, ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਵਿਰਾਜਿਤ ਪੇਖ ਮਨ ਬੰਚਲਾ ਪੈਨੇ। ਰੂਪ ਉਹਦਾ ਇਤਨਾ ਪਰਮ ਮਹਾਨ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੰਚਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਪਾਈ। ਤੋ ਖੈਰ ਖੋਜੋ ਤਾਂ ਕੇ ਚਰਨ ਕਹੋ ਕਤ ਪਾਈਐ, ਹਰ ਹਾਂ ਸੋਈ ਯਤਨ ਬਿਤਾਏ ਜਿਤ ਪਿਰਿਓ ਪਾਈਐ। ਪੈਣੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਦੱਸ ਜਿਸ ਯਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਾਂ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਜੋ ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲੀ ਰਵਾਂ। ਸੋਈ ਯਤਨ ਬਿਤਾਏ ਜਿਤ ਪਿਰਿਓ ਪਾਈਏ। ਆਖਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਪ੍ਰਯਤਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਲਿਆ, ਆਖਿਆ ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਪੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ। ਇਹ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਪਰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਪੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ, ਆਏ ਨਾ ਸੱਕਾ ਤੁਝਕਣ ਪਿਆਰੇ। ਹੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂ, ਭੇਜ ਨਾ ਸੱਕਾਂ ਕੋਏ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਾਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਭੇਜ ਨਾ ਸੱਕਾਂ ਕੋਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀਏ ਮਤ ਸ਼ਹੁ ਦੇਖਾਂ ਸੋਏ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦਰ ਤੂੰ ਆ, ਪਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਏ, ਕਦੀ ਕਾਮੁਕ ਸੁਪਨੇ, ਕਦੀ ਲੋਭ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਕਦੀ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਕਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਖਿਆ ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦਰੀਏ ਮਤ ਸ਼ਹੁ ਦੇਖਾਂ ਸੋਏ। ਮਤਾਂ ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹੁ ਪਤੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਜਾਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੇ ਆਏ, ਪਰ ਨੀਂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਆਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਂਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਤਜ ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਆਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਂਦਰੀਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਆਈ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਵੈਰਾਗਮਈ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਵੈਰਾਗੀ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬੌਰਾ, ਮਸਤਾਨਾ, ਦਵਾਨਾ, ਪਾਗਲ, ਮਜਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਜਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਵਾਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਦੀ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੁਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਵੈਰਾਗਮੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਖੁਦਾਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੁਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਖਰ ਬੋਲ ਪਈ,
आख्या नहीं वेखो सुनिया है कि कोई मजनू होया है पर ए वेखो निरा मजनू है। कहन लगे वो सूफी संत बड़ा पड़ गया बड़ा बोलिया उचे उचे कहन लगा तुसी मैनू उस पागल मजनू दे नाल तुलना दे रहे हो जेड़ा मजनू एक शरीर दी आशकी दे मगर अपना पूरा जीवन गुजार के चला जांदा है। वो एक शरीर दा आशक है मैं रब दा आशक हां मेरी ते मजनू दी तुलना क्यों कर रहे हो। मजनू बहुत पिछे है मजनू मेरे चरण धूड़ वर्गा भी नहीं मैं ते उहदा आशक हां जो सारे बनाउण वाला है रचनहार है निरंकार है। मजनू आम शरीर दा आशक है लैला दा आशक है मैं लैला दा आशक नहीं हां मैं परमात्मा दा आशक हां। तो खैर मैं बेनती कर रहा सां वैराग में हिरदे दे विच्चों जिहड़े बोल निकलदे ने उन्हां बोलां नूं सुन के दूसरियां नूं भी वैराग आ जांदा है। बोल इतने कीमती हुंदे ने कोमल हुंदे ने मानो पत्थर भी पिंगल के चलना शुरू कर देंदे ने। यही कारण है अगले श्लोक विच भगत फरीद साहब जी कहिंदे ने बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान आखिया हे वैराग हे बिरहा मेरे वास्ते तू सुल्तान है मेरे वास्ते तू शाहूकार है मेरे वास्ते सब तो महान है क्योंकि तेरे करके ते मैनू रब दा एहसास हुंदा नजर आ रहा तू ना हुंदा तेरे तो बाद ही रब ने आना है वह किवें आउंदा। तो खैर मैं शेख शादी साहब दे बचन तुहाडे सामने अर्ज कर रहा सां रंग जरद आहे शरद चसम तर अगे चौथी निशानी बयान कीती कम बुरदनो खाना बड़ा थोड़ा है कम गुफ्तनो उन्हां दी बोल बाणी दे अंदर मिठास बड़ी है ते बोल दा बड़ा थोड़ा है रब दा प्यारा खांदा थोड़ा है उन्नी दुनिया तोड़े बंधना अन्न पानी थोड़ा खाया गुरबाणी दे बचन इस तरह हुंदे ने खांदा भी थोड़ा है बोलदा भी थोड़ा है खवाबे हराम ते छेवीं निशानी है उह सौंदा भी थोड़ा है चौवी चौवी घंटे सुत्ता नहीं रहिंदा। फिर मैं बेनती कर रहा रंग जरद आहे शरद चसम तर कम गुरदनो कम गुफ्तनो खवाबे हराम इंतजारी बेकरारी दस्ते सर हर वक्त तो मथे दे उत्ते सिर ते हथ रख के इस इंतजार दे अंदर ही रहिंदा है रब तू कदों मिलेगा निरंकार तू कदों मिलेगा रब जी समा ते बीतदा जा रहा है जीवन मुक्कन दे किनारे आ गया है तेरा मेरा मिलाप कदों आएगा। किसे अदीब ने इस तरह भी लिखा है वह कहिंदा है कांटों से ना पूछिए ना किसी गुल से पूछिए गुल मैंने फुल वह कहिंदा है ना किसी फुल नूं पुछण दी लोड़ है ते ना इन्हां बूटियां दे नाल लगे हुए कंडियां नूं पुछण दी लोड़ है। सदमा चमन के लूट जाने का बुलबुल को पूछिए वह कहिंदा है सदमा बुलबुल नूं सब तो वड्डा है ते सदमा किस गल दा है कि चमन लुटिया गया है बाग उजड़ गया है बाग दी दशा जंगल वर्गी बन गई है बिया बाण बन गई है ना कंडियां नूं कोई फर्क है ना फुल्लां नूं कोई फर्क है फर्क किन्नूं पिया है बुलबुल नूं पिया है। वैरागी हिरदा बुलबुल दी तरह फुल्लां दी भाल विच रहिंदा है वैरागी हिरदा। मैं कदीब दे होर बोल पढ़े उन्हें सवाल किया कहिंदा है पमरा हे परदेसिया मैं पूछत हूं तोहे सारा बदन तेरा सामला पर मुंह पीला क्यों होए। पमरे नूं सवाल करदा है एक कवि पमरा हे परदेसिया दूरों उठ के आण के फुल्लां दे उत्ते बहन वाले पमरे मैं तेनूं एक सवाल करदा मैं पूछत हूं तोहे सारा बदन तेरा सामला तेरा बाकी दा सारा शरीर ते काला है बाकी ते तू सारा सामले रंग वाला है पर मुंह पीला क्यों होए पमरे दा मुंह पीला है मुंह तेरा क्यों पीला है। अगो फिर जवाब आंदा है पमरे वालों लिखे ते कवि ने आप ही है ना जिहड़े चार बोल लिखे ने कवि दी कल्पना ही है पर वो पमरे दी तरफों जवाब दे रहा है वो कहिंदा है बिरहणी के मुख पीले मरम ना जाने कोए जेड़े वैरागी होंदे ना बिरहों दे मारे सताए होंदे ने उन्हां दे मुंह पीले ही होंदे ने। बिरहणी के मुख पीले मरम ना जाने कोए हमरी वेदन सो लखे जो हमसो रोगी होए साडी वेदन साडे दर्द नूं कोई जानदा है जो साडे वर्गा वैरागी होए फुल्लां दा आशक होए दूजा की जाने
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਲਾਗੀ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਣੇ ਪੀਰ ਰਾਮ ਭਗਤ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ। ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਤੀਰ ਤੇ ਬੜੇ ਅਣਿਆਲੇ ਨੇ, ਤਿੱਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਲਾਗੀ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਣੇ ਪੀਰ। ਤੋ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀਏ

मरगट दे बराबर है या फिर बंजर भूमि वर्गा है आप वेखो। तो भगत फरीद साहब जी दे नाल सलोकां नूं आधार बना के कुछ बेनतियां करन दा निमाणा यतन किया गया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग मेहरवान सतगुरु तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दी पाक पवित्र अते निगी गोद आनंद पा रहे सब माई भाई सतसंगी जनों आप रोज सवेर दे वकत लड़ीवार कथा सरवण करदे आ रहे हो भगत फरीद साहब जी दे सलोकां विचों। उस लड़ी नूं अगे तोरदिया होया दो सलोक आप संगत दे सन्मुख पढ़ के सुनाए गए। पहला सलोक फरीदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम। हंड के दा मतलब है तुर फिर के जाग के ते सम दा मतलब है सौं के। सब तो पहला ए वेखो कि गुरबाणी पूरे जीवन नूं इक रात बयान कर दी है रात और पूरे जीवन रात दे चार पैर हुंदे ने। तीन गुरु साहिबाना ने बाणी नूं उचारिया ते चार पैरियां नूं सरलेख बना के। धन गुरु नानक देव पातशाह दी बाणी पैरियां दे नां हेठ उचारी तुहानूं मिलदी है। श्री गुरु रामदास पातशाह ते श्री गुरु अर्जन देव पातशाह तीन गुरु साहिबाना दी बाणी पैरियां नूं सरलेख बना के उचारी गई। उपदेश साडी चोली पाया गया। एक रैन रैन मैंने रात एक रैन के पाहुन तुम आए बहु जुग आसमदाए। गुरबाणी दे अंदर इस तरह भी वचन आउंदा है कि एक रात दा मेहमान बन के पाहुन पाहुन मैंने प्रौणा मेहमान बन के आया है ते जुगां जुगांतरां दियां लम्मियां आसां उम्मीदां ला के इन्हों ही अपना टिकाणा मन के बना के बह गए आया एक रात वास्ते। रात दे चार पैर ने हुण रात बीतेगी किसे दी चंगे ढंग दे नाल ते किसे दी मंदे ढंग दे नाल। ए जिहड़ी छोटा समा लैके चार पैर लैके रात आउंदी है ए रात किसे वास्ते बड़ी लाभकारी बन के आउंदी है किसे वास्ते नुकसान दा कारण बन के आउंदी है। एक रात दे अंदर आ जिहड़ी रात बीत गई दिन दी आमद होई इस रात दे अंदर कईआं नूं वड्डा लाभ होया ते कईआं नूं दूसरे पासे वड्डा नुकसान भी मिलिया है। कईआं दे घरां दे अंदर अज दी रात बच्चिआं दा जन्म होया ते कईआं दे घरां विचों अज दी रात मौत ने भी आण के फेरा पाया है। है तां रात रात आई है रात ने बीत जाना है। ए गल वखरी है कि ओ रात सुंदर तरीके दे नाल भले तरीके दे नाल बीत जाए या ओ रात बुरे तरीके दे नाल बीत जाए। कोई मन दे अंदर सुकून शांति बनी होवे रात पूरी सौं के निकल जांदी है या रात परमात्मा दे गुण गाउंदिया निकल जांदी है। कोई मन दे अंदर सोग तन दे अंदर रोग होवे ते रात पूरी हौके झोरे भरदिया भरदिया बीत जांदी है पूरी रात कले कलेश दे अंदर ही बीत जांदी है। कहिंदे ने कि पुछिया सी गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी नूं अज उहनां दा शहीदी पूरब भी मना रहे हो। गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी नूं पुछिया सी और पुछिया सी कोतवाली दे अंदर आके ते पुछण वाला कौन है धर्म दा उपदेश करन वाला काजी। तेग बहादुर अज दी रात साडी ग्रिफत दे अंदर साडी कैद दे अंदर भला किवें दी गुजरी क्योंकि पिंजरे दे अंदर बंद कीता है। पिंजरा भी बड़ा तंग ते पिंजरे नूं तिखियां सूलां वर्गे किल भी ने
ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸਾਡੀ ਕੈਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਤੀ।